Nong bo ne thang bo mai kei rom da.

ताबीरे सोयाम तोम्बी चनु न सकपा मैटे इसैदा मपुगी मटिक मयाई आकाशवाणी इम्फाल हौजे मुख लांथोक चरी राजेंद्र टोइजम दगी मणिपुरी मतम इसै अहुमखक खुदोल गेहान मद लौबिरसी सै सकपा सिमकी श्याम कुमार ओक्रम गी मयेकता ngarangi mai chak tuna haina sai hoba matamishai

ताइंजम ओंगबी आनंदी देवी ने सकप नोता गौरांग रूप ताबिरी आगेश्वानी इम्फाल लांथोक चरी अधिकारी मयूम बोरेंद्र शर्मा ने खोंबा वायोलिन।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण से जुड़ी तकनीक अपनाने और सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं से सीखने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डे वेवर से वार्ता करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कल श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण करेगा। जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को बढ़ाकर A- किया। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI जांच का आदेश दिया और महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज दुबई में भारत का मुकाबला हांगकांग से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों, बढ़ती आबादी और भविष्य में पानी की जरूरतों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने शहरी स्थानीय निकायों के लिए भी इसी तरह के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कल जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय विभागीय जल सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने जल संरक्षण तकनीकों को अधिक से अधिक अपनाने पर बल दिया। श्री मोदी ने भारतीय विनिर्माणकर्ताओं और हितधारकों को प्रभावी समाधान विकसित करने तथा उन्हें बड़े स्तर पर लागू करने में सक्षम बनाने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की जानकारी देने वाली प्रदर्शनियों और कार्यशालाओं के आयोजन का भी सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने बांध सुरक्षा पर हर मानसून से पहले व्यापक तैयारी, निर्धारित सावधानियों का पालन और स्कूली विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जल क्षेत्र से जुड़े आंकड़ों को एक जगह एकत्र कर व्यवस्थित रूप से प्रबंधित, विश्लेषित और प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डे वेवर आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में श्री वेवर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। उनके साथ बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन भी आए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनके इस यात्रा से भारत बेल्जियम संबंधों को गति मिलने की संभावना है।
2: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले 2 दशकों में पहली भारत यात्रा है जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। यह यात्रा भारत और बेल्जियम के बीच उच्च स्तरीय आदान प्रदान की निरंतर गति को दर्शाती है। साथ ही यह भारत यूरोपीय संघ संबंधों को मजबूत करने में बेल्जियम की महत्वपूर्ण भूमिका को और सुदृढ़ करेगी। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $13 अरब से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे जो दोनों देशों के बीच साझेदारी की मजबूत आर्थिक नींव को रेखांकित करता है। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह आज मुंबई में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों और बैंकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण की औसत राशि बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत उद्यम ऋण को दोगुना करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: Update रहे, आगे रहे। X पर @AIRNewsHindi और Instagram पर AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प। योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण कल मध्यरात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। EOS-05 अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ये भू समकालिक कक्षा में स्थापित किया जाने वाला भारत का पहला इमेजिंग उपग्रह है। जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत के विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को एक पायदान ऊपर बढ़ाकर BBB+ से A- कर दिया है। ये रेटिंग किसी देश की सरकार के ऋण चुकाने की क्षमता और वित्तीय साख का स्वतंत्र मूल्यांकन करती है। एक रिपोर्ट।
7: मंत्रालय ने कहा कि यह उन्नयन चुनौतीपूर्ण वैश्विक वातावरण में हुआ है और निरंतर विकास, प्रभावी आर्थिक नीतियों, बेहतर राजकोषीय प्रबंधन तथा मजबूत वित्तीय प्रणाली द्वारा समर्थित भारत के आर्थिक बुनियादी ढांचे का परिचायक है। JCR ने एक बयान में कहा कि मजबूत निजी उपभोग और सार्वजनिक निवेश से समर्थित भारतीय अर्थव्यवस्था ने उच्च विकास दर बनाए रखी है। जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने कहा कि केंद्रीय राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2025 में 4.07% से घटकर वित्त वर्ष 2026 में 4.04% पर आ गया है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नेहा गोस्वामी।
0: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI जांच का आदेश दिया है और 6 साल तक प्राथमिकी दर्ज न करने पर मुंबई पुलिस को फटकार लगाई है। एक रिपोर्ट।
8: दिशा सालियान मामले में न्यायमूर्ति सारंगवी कोतवाल और न्यायमूर्ति रंजीत सिन्हा आर भोसले की खंडपीठ ने कल CBI को दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान द्वारा दायर शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश किसी के खिलाफ दोष सिद्ध करने का संकेत नहीं है। पीठ ने कहा किसी व्यक्ति को तब तक आरोपी नहीं माना जाएगा जब तक जांच अधिकारी की राय में उनके खिलाफ उचित संदेह पैदा करने के पर्याप्त आधार न हो। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उत्तर प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV टीकाकरण का विशेष अभियान आज से इस महीने की 17 तारीख तक राज्यभर में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 14 साल की उम्र की लगभग 10 लाख पात्र किशोरियों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है। भारत का 11 सदस्यीय विशेषज्ञ दल कल नेपाल के त्रिशूली बाजार पहुंच गया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विशेष उपकरणों के साथ पहुंचा ये दल आज से नेपाल की सेना के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य की शुरुआत करेगा। नेपाल में आई बाढ़ के बाद से भारत की नेपाल को लगातार सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना का 5वां विमान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सहायता भेजी है। इस बीच नेपाल और तिब्बत में अचानक आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,250 हो गई है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
9: महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। ग्रुप बी के मैच में कल रात दुबई में प्रतियोगिता में श्रीलंका ने इंडोनेशिया को 75 रन से मात दी। और पहली ICC विमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात करें तो ये प्रतियोगिता अगले साल 14 से 28 फरवरी के बीच खेली जाएगी। इसकी मेजबानी अब भारत को मिल गई है। इसका कारण श्रीलंका को मेजबानी से हटाया जाना है। ICC ने कहा कि 6 टीमों का ये टूर्नामेंट अब भारत में मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा। इस प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई करने वाली 6 टीमों में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेलेंगी। 28 फरवरी को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इसके अलावा भारत पहली बार अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर 5 से 9 सितम्बर तक ह्यूंडई विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला की मेजबानी करेगा। इसमें 20 देशों के 100 से अधिक एथलीट हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता का औपचारिक उद्घाटन 4 सितंबर को होगा।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों सिक्किम विदर्भ और उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिन तक तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड चंडीगढ़ बिहार और छत्तीसगढ़ में भी अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान है। उधर मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में तेज बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है।
10: भोपाल ग्वालियर चंबल और नर्मदापुरम संभाग में कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। प्रशासन ने निचले इलाकों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मंडला में मंगलवार शाम से शुरू हुई बारिश गुरुवार सुबह तक रुक रुक कर जारी रही, इससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। सतना में भारी बारिश से बाढ़ और जलभराव प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य जारी है। प्रशासन ने 434 प्रभावित आवासों के लिए 18,01,000 रुपए की सहायता दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से मैं विपिन मिश्रा।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के बालासोर जिले में सुवर्ण रेखा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राजघाट में भी नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है।
11: उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि बालेश्वर के राजघाट में सुवर्णरेखा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी का जलस्तर 10.36 मीटर के खतरे के निशान के मुकाबले लगभग 11.5 मीटर तक पहुंच गया है। झारखंड के गालुडीह बैरेज से छोड़े गए पानी ने नदी के बहाव को और बढ़ा दिया है। भोगराई बाल्यापाल और जलेश्वर ब्लॉक के कई गाँव में बाढ़ का पानी घुस गया है। प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने और राहत कार्य जारी रखे हुए है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
12: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
13: धन्यवाद कनक। एयर मार्शल सेवानिवृत्त जितेंद्र मिश्रा को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का सीईओ बनाए जाने की खबर आज की ज्यादातर अखबारों की पहली सुर्खी है। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है, राम मंदिर के लिए वायुसेना के पूर्व अफसर पर ट्रस्ट। दैनिक जागरण लिखता है, ऑपरेशन सिंदूर के वायुवीर बने राम मंदिर ट्रस्ट के पहले ट्रस्टी। गोविंद देवगिरी बने महासचिव। अमर उजाला की टिप्पणी है, सिंदूर के सेनानी को रामलला की कमान। राजस्थान पत्रिका ने अखिल भारतीय सर्वेक्षण के हवाले से बताया है, उच्च शिक्षा में बेटियों की उड़ान, दाखिलों में लड़कों को पछाड़ा। साथ ही पत्र ने यह भी लिखा है, राजस्थान मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में अब भी लड़कों को बढ़त। नेपाल त्रासदी में राहत और बचाव कार्यों में भारत द्वारा की गई भरपूर मदद पर नेपाल के प्रधानमंत्री का आभार, लोकसत्य के पहले पन्ने पर है। नेपाल के पीएम बोले, भारत का धन्यवाद। अमेरिका में पासपोर्ट नियमों में बदलाव की तैयारी, दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, इसका उद्देश्य अमेरिका में जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता पर प्रतिबंध लगाना है। हिंदुस्तान ने राजधानी दिल्ली में एसआईआर के दौरान की गई मैपिंग पर लिखा है, 45% लोग ही दे पाए अपना पुराना ब्यौरा, नाम जुड़वाने के लिए घोषणा पत्र जरूरी। जनसत्ता ने लुप्त प्राय सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए दक्कन में 16 अहम क्षेत्रों की पहचान किए जाने का समाचार प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता से देते हुए लिखा है, सोन चिड़ैया की संख्या अब केवल 100-150 ही बची है। ये पक्षी कभी पूरे भारत और दक्षिण पाकिस्तान में पाया जाता था। दैनिक भास्कर की ये पंक्तियां ध्यान खींचती हैं, डिजिटल दौर में दोस्ती का संकट, मैसेज तो होते हैं मुलाकात नहीं। एनसीईआरटी द्वारा 6ठी और 9वीं की सभी भारतीय भाषाओं की नई पुस्तकों के नाम देश की नदियों के नाम पर रखे जाने पर दैनिक जागरण लिखता है, देश की नई पीढ़ी को भारतीय भाषाओं से जोड़ने की पहल में छात्र सिर्फ भाषा नहीं सीखेंगे बल्कि देश की नदियों

0: कहीं ना कहीं ना ए ए तुरनी में सिंग नो सिंग नो हबनी
1: कहीं नो तू रोए ऐ बोंगांग मुसादो ना कहीं नो अजम पाखली दुबो कहीं नो
0: अंगांग ये हबन नत्ते बा डॉक्टर ना याम वाहन गनु हारी दुदी हाँ कदाई बोंग दुपिरो
1: कहीं नो
0: चक्सा है तो पुदंग आरी ने द बोंग चाना बगी याम पती
1: बोंग दुबो दुपिरो उदा कहीं नो ने हक्षांग साजल खरक तो हारी दुदी डॉक्टर ना लाइक तो रुके लाइक तो रुके
2: ग्रेट मैन सिलाई से पास रहा है ए कई कु सिंगाओ ब्रा गाउदे
0: गाउदे लाइरिक त पंग पापा हन गनु हारी दुदी डॉक्टर ना छे छे हिदा सि थक टोक सि से
1: कई दाग नो
0: मैक तंग तुम न नबा
1: ओ
0: से
1: ना नुथिल तुम ब फति खंग दुरो ना नंग जि दि
0: से साबिरो से इसिंग सि द लेरे से
1: चा सार
0: पुंखाई मुख तुमथरा दी हक्सांग ब्रेन याम न फाय हाय दुदी डॉक्टर ना
1: होय डॉक्टर सिंजी याम हाय द्रा याम हाय को
0: से से हिपसी हिपतर ओ
1: ओ
0: हिपतर ओ से
1: आई यार बसा
0: यार यार 30 मिनट से फाबगने आई ना हौदोरक तुइनी मितु उसेलो
1: से ए मित उसेलेना मान खदि खंगदन उदि उदन नंस तुमो नसादु फनाबा
0: आइदिने इमुंगि थब इंखांग लुसिन गदब मयाम म लैरिये
1: ओ ओ
0: वांगांग बिरनुसे
1: अदुदि वारीमा लिरो वारी लिरो
0: अं अं आइ लिरके थाइना थाइना आ ममांगैदने जंगल लमदा याम चाव वयोंग जाव म लैरम बोइरे मबुक

0: बीमा बीमा
1: हेमा
0: नखोई बुक नाम तो लेता ब्रो
1: इमा उइर माले हेमा आई दी इमा
0: होइन हे
1: आई सी दले ये
0: हो हो हो
1: संग उला ओ
0: हेमा
1: हेमा कैनो पुरे इदु बो
0: ओ से से से से मिर ग ना पक ने सिंग ल फुगा
1: आई न पाम जब दो
0: हाय कैनो नंग बु हि चलु ब्रो हा ना सा नुंगाइ त्र ब्रा मिया
1: कैसु तौ दि दैमा चंग ओलाओ
0: हो हो हो ऐ इबुंगो दिया
1: हिदाक चाख्रे तुमी इमा
0: ओ
1: इमाना आ मथकते लेरमनी
0: हो हो परे परे नंग चेकअप तुंग सितारी दुदी काउर ब नंगबो
1: ओ ऐ लुसिलु रगे इमा
0: होइने
1: पुंग अनि दा हाइबने नंगनिदा
0: होय होय
2: आ मादिंग आ हक पोथाजरी माने
0: ओ
2: आइना हदो पिरक्त्रबा बिना नंग योर एदना
0: योजरे नंबेमा आइए चमीना रु रगे
2: ए फरे फरे फरे बेमा खंग्रेदा तौरी
0: खंगे था तरुकती मपुम फारमनी बिनी तागी
2: होने
0: इबुदी मसा कई तौद्रेदनामा
2: फन यामी फन उरेदा डॉक्टर ने करें तो तौर है
0: ओ ओ
2: डॉक्टर लाइबू लाइरीदा नमा ना की लमन से कर्म मपोक्त सिंबरीबनो खंग्रेदीना
0: ए करी लमनोद नंबेमा ओंथो ओंथोपा
3: कदा जनु नंग चतुबो ए आइ आइ आइ लरिते
1: टेबल द लै होबने
3: ओ
1: आइ डॉक्टर द चेकअप चलुगे
3: हा ओ
1: आइ खै मासुला ए
3: इमा इमा ला एबा ओ ए इमा ला इना
0: ओ इबुङो
3: कइनो खै मुंजिबो डॉक्टर डॉक्टर चेकअप त हाइ लैसिबो कइनो दिता नंग नसांगम दब्रो
2: ए कसे तो देदा सुमने यंथो जेना हाइनरिबने
3: ओ यंथो कोना फै यंथो कोना फै अदुदि नोय मासु अखोय मासु नंगसु नोय हुम पुलप चेकअप तो करो

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबका बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जो हमें मिला है ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया जी से।
2: लिखते हैं, जिंदगी की कठिन परिस्थितियां भी एक वॉशिंग मशीन की तरह होती हैं, जो हमें खूब घुमाती हैं, निचोड़ती भी हैं, परंतु जब हम इनसे बाहर आते हैं तो हमारा व्यक्तित्व पहले से अधिक स्वच्छ, बेहतर और चमकदार हो जाता है।
3: इस मजेदार और अर्थपूर्ण सुविचार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे लिखते हैं, कार्यक्रम उमंग के सभी कार्यकर्ताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है ओम प्रकाश दशोरा, मीनाक्षी दशोरा, स्वच्छंद दशोरा और रचना दशोरा जी का। वो लिखते हैं,
3: श्रीमान जी, आपका ये प्रोग्राम बहुत शिक्षाप्रद और रोचक और साथ ही साथ प्रेरणादायक है।
2: ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे और अंजनी अंगारे जी ने पिछले सप्ताह के कार्यक्रमों की प्रतिक्रिया में इंटरनेट पर कुछ पंक्तियां भेजी हैं। लिखते हैं,
3: अपनों से जीवंत संवाद करो, सुनो, दिल से बोलो, जरा हंसो, गाओ, परिवार के संग हृदय पट खोलो जरा। जीवन उल्लास रिश्तों की मिठास है तेरे आसपास ही। इंटरनेट के मोहपाश से बाहर तो निकलो जरा।

0: धन्यवाद आप सबका एक बार फिर से आपके संदेशों के लिए और स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में।
1: श्रोताओं, कल हमने बात की थी जापान की एक अनूठी सुंदर परंपरा की।
0: श्रोताओं, आज एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं जापान की ही एक प्यारी सी घटना। ये प्रेरक तो है ही, साथ ही साथ ये संदेश भी देती है कि जिस राष्ट्र में विद्या का सम्मान होता है वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है।
1: जी हाँ श्रोताओं, तभी तो जापान को दुनिया के सबसे अधिक उन्नत, शिक्षित और तकनीकी रूप से संपन्न राष्ट्र के रूप में माना जाता है।
0: जी
1: तो चलिए करते हैं कहानी की शुरुआत।
0: श्रोताओं, आज हम आपको जापान की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें मानवता और शिक्षा के प्रति सम्मान का बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है।
1: जी, ये कहानी है जापान के होकाइडो क्षेत्र की एक स्कूली छात्रा की। उसका नाम था काना हराडा।
0: अजीत जी, मैंने इस कहानी के बारे में सुना है कि जापान में एक रेलवे स्टेशन केवल एक स्कूल जाने वाली लड़की के लिए चलाया जाता रहा, क्या ये सच है?
1: विमलेश जी, कहानी कुछ इस तरह ही सुनाई जाती है। इंटरनेट पर कहानियां इसी प्रकार से वायरल होती हैं। लेकिन ये कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा कि जापान रेलवे ने केवल एक लड़की के लिए पूरी ट्रेन चलवाई थी। आज उमंग कार्यक्रम में हम इसकी पड़ताल करेंगे। सच्चाई ये है कि काना हराडा उस छोटे स्टेशन की नियमित छात्रा यात्री थी, लेकिन ट्रेन में दूसरे यात्री भी सफर करते थे।
0: अच्छा, तो ये बात है।
1: जी हाँ, ये बात है बिल्कुल। स्टेशन का नाम था क्यूशिराताकी। ये जापान के उत्तरी द्वीप होकाइडो का एक दूरदराज इलाका है। धीरे धीरे वहाँ यात्रियों की संख्या कम होती जा रही थी, क्योंकि लोग रोजगार के लिए टोक्यो और ओसाका जैसे शहरों का रुख कर रहे थे। कभी कभी तो तीन चार यात्री ही हुआ करते थे।
0: तो रेलवे ने स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया?
1: रेलवे ने यात्रियों की संख्या और कम उपयोग होने वाले कई स्टेशनों को बंद करने की योजना बनाई, लेकिन प्रबंधन ने एक बात नोट की। वो ये बात थी, उस स्टेशन से एक स्कूली लड़की काना हराडा नियमित रूप से स्कूल जाती थी।
0: श्रोताओं, आइए कल्पना करते हैं, चारों तरफ बर्फ, ठंडी हवाएं और एक छोटी सी बच्ची अपने स्कूल बैग के साथ स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही है, और वो भी रोज, है ना अजीत जी?
1: जी विमलेश जी, यही तो काना हराडा की कहानी का सबसे भावात्मक दृश्य है। सुबह का समय है, काना हराडा अपने घर से निकलती है, स्टेशन पहुंचती है और ट्रेन का इंतजार करती है। शायद कुछ ऐसा कहती होगी,
0: ठंड बहुत है लेकिन मुझे स्कूल जाना है, मुझे पढ़ना है।
1: और फिर ट्रेन आती है।
0: जी, ट्रेन रुकती है, काना हराडा उसमें बैठती है और स्कूल चली जाती है।
1: फिर क्या हुआ विमलेश जी?
0: रेलवे ने ट्रेन और स्टेशन बंद करने का निर्णय ले लिया था, लेकिन काना हराडा की पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए ट्रेन और स्टेशन की सेवा उसके स्कूल जाने के समय तक जारी रही।
1: विमलेश जी, जरा सोचिए, आज जब हम किसी छोटे से गांव में स्कूल, सड़क या बस की बात करते हैं तो अक्सर सवाल पूछा जाता है, कितने लोग इसका इस्तेमाल करेंगे?
0: सही कहा जी जी, लेकिन शिक्षा के मामले में केवल संख्या नहीं देखी जानी चाहिए। कभी कभी एक बच्चे के लिए बनाया गया रास्ता उसके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है।
1: वाह, बहुत सुंदर बात विमलेश जी। मुझे लगता है कि एक बच्ची या बच्चा मात्र संख्या नहीं है
0: जी,
1: वे एक भविष्य है। तो श्रोताओं, फिर आखिर वो दिन आया जबकि काना हराडा ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर ली।
0: जी, और फिर मार्च 2016 में क्यूशिराताकी स्टेशन की सेवा समाप्त कर दी गई।
1: विमलेश जी, प्रश्न उठता है कि इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं, या श्रोताओं को उमंग कार्यक्रम की ओर से क्या संदेश दे सकते हैं?
0: अजीत जी, वो संदेश है, बच्चे की शिक्षा को रास्ता दीजिए।
1: जी हाँ मित्रों, न जाने हमारे आसपास कितने बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें थोड़ी सी सहायता, थोड़ी सी संवेदना और बस एक अवसर चाहिए।
0: हो सकता है किसी बच्चे के पास किताब नहीं हो, किसी के पास स्कूल जाने का साधन न हो और किसी को परिवार का सहयोग न मिल रहा हो,
1: और यदि हम उसके रास्ते की एक छोटी सी बाधा भी दूर कर दें,
0: तो शायद हम केवल उसकी आज की समस्या नहीं, उसके पूरे भविष्य को बदल सकते हैं।
1: जी बिल्कुल। जी हाँ श्रोताओ, एक बच्चे के लिए बनाया गया रास्ता
0: आने वाली पीढ़ियों का रास्ता बन सकता है।
1: तो ये थी हमारी आज की कहानी और प्रस्तुत है आज का प्रश्न। प्रश्न है, जापान के उस रेलवे स्टेशन का नाम क्या था जहां से काना हराडा अपने स्कूल जाने के लिए ट्रेन लेती थी, और उस स्टेशन को कब बंद कर दिया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: जापान के उस रेलवे स्टेशन का क्या नाम है जहां से काना हराडा अपने स्कूल जाती थी और उसे कब बंद कर दिया गया?
1: अब अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं। तो बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं कार्यक्रम माला की चांदी की पायल।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक प्यारी सी बच्ची माला के बारे में बताया गया है कि चांदी की पायल पहनकर किस तरह वो मनोविनोद करती है और लुका छिपी के खेल से सबका मनोरंजन भी करती है।
1: माला की चांदी की पायल।
2: माला बिल्ली को डराती है। वो अपनी नानी को डराती है।
3: अरे माला तू।
2: वो अपने छोटे भाई को डराती। वो डाकिये को डराती।
4: बहन जी, डाकिया।
2: उसकी टोपी भी हवा में उछल गई। एक दिन माला की मां ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी।
3: माला, यह तुम्हारे लिए है।
2: माला ने जल्दी से डिब्बी खोली, जिसमें उसे मिली नीले कागज में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। उन्हें पहनकर वो पूरे घर में घूमने लगी। छोटे छोटे घुंघरू झनकते। अब माला जहां भी जाती सब जानते। उसकी आवाज से बिल्ली को पता लग गया कि माला आ रही है। माला की होश से पहले बिल्ली कूद गई। माला की हेस से पहले नानी पलट गई। इस बार वो डरी नहीं, क्योंकि उन्हें माला के आने का पायल की आवाज से पहले ही पता चल गया था। माला की थप से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया। माला की भौ से पहले डाकिया निकल गया। माला की छिक छिक छम की पायल की आवाज सुनकर डाकिये को पहले ही पता चल गया कि माला आ रही है। अब माला किसी को डरा नहीं पाती। तो ऐसे में माला ने क्या किया? उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी। वो बहुत खुश है।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम माला की चांदी की पायल।
5: जी मैं रमेश, पिछले 20 साल से ट्रक चला रहा। रात को सफर लंबा होता है और रास्ते अंधेरे। उस रात मैंने गाड़ी एक ढाबे के पास खड़ी की थी और रिफ्लेक्टर के ऊपर मिट्टी जमी हुई थी। तो मैंने सोचा कल सुबह साफ कर दूंगा। मुझे बात छोटी सी लगी। सिर्फ 1 मिनट लगता है साफ करने में। उस रात किसी की जान भी तो जा सकती थी।

0: रात में सड़क किनारे खड़े वाहन पर साफ और सही रिफ्लेक्टर होना आवश्यक है ताकि वो दूर से स्पष्ट रूप से दिखाई दे।
1: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम रेडियो की कहानी।
2: इस कार्यक्रम में रेडियो के आविष्कार से लेकर उसके उद्भव और विकास की जानकारी एक सुंदर रेडियो नाटक के द्वारा दी गई है।
3: दोस्तों, मैं शरद हूँ।
4: और मैं सुचित्रा हूँ।
3: आज हम आपको रेडियो के इतिहास के बारे में बता रहे हैं और ये भी बताएंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है।
4: जी हाँ, रेडियो यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों से काम करने वाला संचार यंत्र। इसे लोग पहले जादुई डिब्बा भी कहते थे।
3: इस रोचक और प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत होती है 1865 में ब्रिटेन से। जेम्स कॉक मैक्सवेल नाम के स्कॉटिश वैज्ञानिक ने एक प्रकार की ऊर्जा के बारे में अपना एक गणितीय सिद्धांत सबके सामने प्रस्तुत किया। इस ऊर्जा का उन्होंने नाम दिया विद्युत चुंबकीय तरंग। उनका यह सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित था कि ऊर्जा हवा में प्रवाहित की जा सकती है, बेशक वो दिखाई ना पड़े।
4: परंतु मिस्टर मैक्सवेल अपने इस सिद्धांत को प्रमाणित नहीं कर सके। दूसरे वैज्ञानिक भी शायद इसे प्रमाणित नहीं कर पाते अगर 1887 में जर्मन वैज्ञानिक हेनरिच हर्ट्ज का प्रयोग सामने ना आया होता। इस प्रयोग का वास्तविक उपयोग तब हुआ जब गुग्लियेमो मार्कोनी द्वारा तरंग उत्पन्न करने वाले उपकरण में सुधार किया गया।
3: गुग्लियेमो मार्कोनी का जन्म 25 अप्रैल 1874 को इटली के बोलोगना शहर में हुआ था। उच्च श्रृंखल प्रवृत्ति वाले इस विद्यार्थी को स्कूली पाठों में किसी भी प्रकार की दिलचस्पी न थी, पर वो दूसरे आविष्कारकों के सिद्धांतों को आधार बनाकर नित नए नए प्रयोगों में व्यस्त रहता था। पिता को मार्कोनी की ये गतिविधियां बिल्कुल न भाती थी। एक दिन की बात है,
5: मैं तो इस बच्चे से तंग आ गया हूं, ना पढ़ना ना लिखना, खेल खेल खेल, क्या करेगा ये?
6: नहीं नहीं, वो सिर्फ खेलता नहीं है। क्या आपने ध्यान दिया है, कई बार उसके प्रयोग बड़े रोचक होते हैं।
5: सिर्फ प्रयोग करने से क्या वो अपने पांव पर खड़ा हो सकता है बिना पढ़ाई के?
6: सुनिए, मेरी भी यही चिंता है।
5: ना जाने क्या होगा इसका।
6: भौतिकी और विद्युत विज्ञान में उसकी बड़ी रुचि है, इसी बात पर वो अक्सर प्रयोग करता रहता है। उसके चचेरे भाई बहन तो उसके प्रयोगों से बड़े प्रभावित हैं।
5: अरे वो सब तो ठीक है, पर
6: न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है जी कि आगे चलकर मार्कोनी एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा।
4: एक सफल जीवन की खोज में मार्कोनी औपचारिक शिक्षा तो न ले पाए, पर सफलता पा लेने की दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा उन्होंने रेडियो जैसा नायाब आविष्कार इस जगत के सामने प्रस्तुत किया। ये 1893 की बात है। गुग्लियेमो मार्कोनी जब मात्र 20 वर्ष का था, तब उसने पहली बार बिना तार के विद्युत चुंबकीय तरंगों को 3 किलोमीटर की दूरी तक भेजने में सफलता प्राप्त की। और ये प्रयोग उसने किसी बड़ी प्रयोगशाला में नहीं, अपने घर पर ही किया।
7: ऐसे ऐसे
8: झूठ मारना।
7: सैम है ना? अरे इधर तू आओ। हाँ हाँ आते हैं। सैम है ना, क्या तुम लोग तैयार हो?
8: हम तो तैयार हैं मार्कोनी, पर ये तो बताओ तुम करने क्या जा रहे हो?
7: आज मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ एक अद्भुत प्रयोग।
9: कैसा प्रयोग?
7: आवाजों को बिना तार के हवा में एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने का प्रयोग।
8: बिना तार के? भला ये कैसे संभव है?
10: संभव तो है भाई, संभव है। अच्छा देखो, मैं अपना ये उपकरण चालू करता हूँ। इसे कहते हैं ट्रांसमीटर।
8: अच्छा
10: अच्छा, अब तुम जल्दी से भागकर घर पहुंच जाओ।
6: अच्छा।
10: वहाँ किचन के पास वाले कमरे में मैंने रिसीवर लगा रखा है।
8: हाँ, ठीक है।
10: उसी के साथ एक घंटी भी लगा रखी है।
6: घंटी भी?
10: सिग्नल पहुँचते ही घंटी बज उठेगी।
9: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, हम जाते हैं, हम जाते हैं।
10: फिर जाओ ना। पहुँच गए?
9: हाँ हाँ।
10: ठीक है, अब मैं रेडियो सिग्नल भेज रहा हूँ।
9: हाँ हाँ भेजो, जल्दी भेजो।
8: अरे वाह, अरे वाह, क्या
9: बात है! अरे वाह, मार्कोनी, क्या क्या बात है!
8: अरे ये तो जादू की तरह लगता है।
6: वाह, क्या बात है!
8: अरे वाह,
10: सिग्नल मिला?
8: हाँ हाँ, ये तो बड़ा दिलचस्प है, अद्भुत। शाबाश मार्कोनी, बधाई हो, बधाई।
4: और उस दिन मार्कोनी ने पहले एक कमरे से दूसरे कमरे तक, फिर घर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, और फिर घर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बागीचे तक बिना तार इस्तेमाल किए विद्युत चुंबकीय तरंगों को भेजा।
3: सन 1897 में मार्कोनी ने वायरलेस टेलीग्राफ और सिग्नल कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी ने एक साल बाद सन 1898 में इंग्लैंड के चेम्सफोर्ड में संसार की पहली रेडियो फैक्ट्री खोली।
4: फिर वर्ष 1900 में ट्यून्ड टेलीग्राफी के लिए प्रसिद्ध 7777 पेटेंट नंबर मार्कोनी ने लिया, और उन्होंने इस उपकरण का प्रयोग पहला वायरलेस संकेत कनाडा और इंग्लैंड के बीच अटलांटिक महासागर के पार यानी के 3220 किलोमीटर की दूरी तक भेजने में किया।

0: इस प्रकार ये प्रयास इससे पहले के प्रयोग से 100 गुना अधिक दूरी तय कर सका। इससे ये सिद्ध हो गया कि रेडियो तरंगों पर पृथ्वी की वक्र आकृति का प्रभाव नहीं पड़ता। ये प्रयोग एक मील का पत्थर साबित हुआ।
1: ये संदेश भेजे गए इंग्लैंड और कनाडा के बीच मार्कोनी के रेडियो द्वारा, जिसमें मोर्स कोड का इस्तेमाल किया गया था। ये कोड सैमुअल मोर्स की देन है, जो मार्कोनी की ही तरह कल्पनाशील व्यक्ति थे।
0: बात 24 दिसंबर सन 1906 की है। अमरीकी तट के नजदीक अटलांटिक महासागर में जहाजों पर रेडियो ऑपरेटर।
2: आज बड़ी कड़ाके की ठंड है।
3: हाँ डेविड, ठंड तो है ही, और फिर समुद्री यात्रा ना जाने कब पहुंचेंगे।
2: मैं भी यही सोच रहा हूँ रॉबर्ट, घर में होते तो मजा आ जाता। कल क्रिसमस भी तो है ना।
3: काश इस वक्त हम अपने परिवार के साथ होते।
2: लेकिन ये मौसम भी तो साथ नहीं दे रहा। ये बर्फीली आंधियां और ऊपर से घने बादल।
3: कप्तान ने कहा था कि कल हम बंदरगाह में होंगे, लेकिन अभी तक हमें जहाज को आगे बढ़ाने का सिग्नल नहीं मिला है, शायद मौसम की वजह से।
2: रॉबर्ट, रेडियो सिग्नल को लगातार सुनते रहो, शायद आगे बढ़ने का सिग्नल मिल जाए।
3: देखता हूँ।
2: सुन सुन, ऐसा करो रॉबर्ट, दूसरी फ्रीक्वेंसी पर देखो।
3: अरे ये क्या, ये मुझे क्या सुनाई पड़ रहा है?

0: अरे रॉबर्ट, रॉबर्ट, ये तो क्रिसमस कैरोल है।
1: अद्भुत, अति सुंदर।
2: For God so loved his world that he sent his only begotten son. I wish you a merry Christmas.
0: अरे वाह, अरे वाह, वाह! रेडियो पर आदमी की आवाज, अद्भुत, सचमुच अद्भुत।
1: वाह, क्या बात है,
0: वाह! पहली बार सुना है ऐसा।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: वाह,
3: ये आवाज कनाडा के रेगिनाल्ड फेसेंडन की थी। ये पहला अवसर था जब रेडियो पर मानवीय आवाज सुनाई पड़ी, और इस तरह मानवता को मिला क्रिसमस की पूर्व संध्या पर विज्ञान का एक अनमोल उपहार। इसमें सिर्फ कुछ वाक्य, एक गीत और वायलिन का संगीत था।
4: बहुत जल्दी ही लोगों ने मार्कोनी की कंपनी द्वारा बनाए गए इस उपकरण के माध्यम से लंबी लंबी दूरियों के पार भी संदेश भेजना और ग्रहण करना शुरू कर दिया।
3: मार्कोनी के इस आविष्कार से पहले जहाज यात्रियों के लिए बंदरगाह पर पहुंचने से पहले किसी भी प्रकार का संदेश संचार संभव न था।
4: सन 1912 अप्रैल रविवार का दिन था। टाइटैनिक विश्व का सबसे बड़ा यात्री जहाज एक भीषण हादसे में बर्फ की शिला से टकराकर डूब गया।
3: इन दावों के बावजूद कि यह जहाज डूब नहीं सकता,
0: अरे ये क्या हो रहा है? लगता है जहाज किसी चीज से, शायद बर्फ की शिला से टकराया है।
5: अरे भागो, भागो, बाहर निकलो, भागो, डैम की ओर भागो।
6: ये क्या हो रहा है? जहाज पूरी तरह हिल रहा है।
7: ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? जहाज पूरी तरह हिल रहा है।
8: हेड पर कितनी बड़ी दरार पड़ गई है। अरे बचाओ, अरे तो पानी भर गया।
0: जहाज की स्पीड कम करो। ऑपरेट द बैक प्रोपेलर। जहाज को पीछे करो। एंड कॉल द रेडियो ऑपरेटर चेक एंड हरे।
7: यस यस कैप्टन स्मिथ, यस।
0: ऑपरेटर जैक, इमरजेंसी मैसेज भेजो। सेव टाइटैनिक, शिप लोकेशन 40 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ। आई रिपीट, 40 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ। और हेल्प, लाइट सिग्नल भेजो। सेंड जनरल कॉल डिस्ट्रेस।
7: जल्दी जल्दी करो।
0: जीवन रक्षक नावों को नीचे उतारो। लाइफ बोट उतारो, लाइफ बोट को नीचे उतारो।
9: Gentlemen, it has been a privilege playing with you tonight.
3: क्या आपको पता है, टाइटैनिक के कप्तान स्मिथ ने मार्कोनी कंपनी को मॉर्स कोड पर क्या संदेश भेजा था? संदेश था,
4: सेव अस टाइटैनिक सिंकिंग, हेल्प हेल्प,
3: जो मार्कोनी के रेडियो पर इस प्रकार सुनाई पड़ा था। वायरलेस ऑपरेटर जैक फिलिप्स और हेरल्ड को मार्कोनी टेलीग्राफ कंपनी ने टाइटैनिक जहाज पर संदेश भेजने और लेने के लिए नियुक्त किया था। कैसी विडंबना है, जैक फिलिप्स, जिसकी उम्र 28 साल थी, टाइटैनिक जहाज के साथ ही डूब गया, और हेरल्ड ब्राइट, जिसकी उम्र 22 साल थी, बच गया।
4: बाद में इस हादसे में बचे एक यात्री ने भी ये बताया कि रेडियो ऑपरेटर ने मार्कोनी कंपनी और नजदीक के जहाजों को मदद के लिए किस प्रकार टेलीग्राफिक संदेश को भेजा। इस बात का पूरा पूरा श्रेय रेडियो को ही जाता है।
3: 1909 में मार्कोनी और फर्डिनेंड ब्रायन दोनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला। पर मार्कोनी द्वारा नोबेल पुरस्कार लेने की बात ही कुछ और है।

0: जी मैं बहुत अच्छा और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ।
1: गुड गुड।
0: सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा से मैं एक ऐसा उपकरण तैयार कर सका हूँ जो पूरे विश्व में मेल मिलाप की भावना विकसित कर पाएगा।
2: बिल्कुल।
1: वेरी गुड। वेरी गुड।

0: 20 जुलाई 1937 को रोम में उनकी मृत्यु हुई। मार्कोनी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए विश्व भर के सभी रेडियो स्टेशनों ने 2 मिनट का मौन रखा। आज भी विश्व उनके अनूठे योगदान रेडियो को आभार सहित याद करता है।
1: तब से अब तक रेडियो में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। आज भी बहुत सारे संचार माध्यमों के होते हुए भी इस नायाब जादुई डिब्बे का आकर्षण समय के साथ कुछ कम नहीं हुआ है।
2: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम रेडियो की कहानी। अब हमारा समय समाप्त हुआ चाहता है, तो अब अपने मित्र अजीत को
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, चेतना, जगबंधु और मंजू जी के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग
5: अदुम नाउ जिकता विरे NCERTG तेंबांग लोइनेना पुथोक्से वथौरम उमंग आकाशवाणी इम्फाल हौजिक अमुक ताबिरसी सिनजरी अदुम द माइक कुनमाथोई शुभ तांकक थौरम लानथोकपिरिबा नोंमाइथेम बेबेका सिंगजमै युमनाम लैकाई।
6: आकाशवाणी इम्फाल मियामगिनी मियामगिदमक लैजबनी अदुगा मियामगी थौगल मपुंगफाना पांथोकपा गमहनबिरिबा आइखैगी थौना हापिरिबा आइखैगी लिसनर्सिंगनी थवा याउना ताबिरिबसिंग आकाशवाणी इम्फालगी असेंबखुम लुइनी अदुना लिसनर्सिंगगिदमक सिंजलांगजरिबा थौरम सिनजरी अदुम द माइक ताबिरिबसिंगदा कुचिनजरी थौरम असी थौरम लानथोकपदा आखंग अहिसिंगी पावताक फंगलबा प्रोफेशनली ट्रेन थौरबा प्रेजेंटर्सिंगना लानथोकप थौरम नचदे ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯁꯅꯔꯁꯤꯡꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝꯅꯤ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯄꯨꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ
7: ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯍꯣꯡꯂꯤꯕ ꯉꯁꯤ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯈꯣꯡꯆꯠꯁꯤꯗ ꯆꯦꯟꯊꯔꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯅ ꯄꯥꯛꯂꯕ ꯏꯄꯥꯛꯇꯝꯅ ꯆꯦꯟꯊꯔꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯀꯌꯥ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯗꯦꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯏꯔꯩꯁꯤꯅ ꯄꯨꯕꯤꯔꯛꯂꯤ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯁꯤꯅꯖꯔꯤ ꯃꯥꯏꯛ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯑꯩ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯊꯦꯝ ꯕꯦꯕꯦꯒꯥꯁꯤꯡ ꯍꯤꯡꯒꯥꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯏꯀꯣꯛ ꯅꯣꯡꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕꯗ ꯁꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕ ꯌꯥꯎꯔꯁꯨ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃꯇꯒ ꯎꯅꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃꯇ ꯍꯪꯖꯒꯦ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯂꯩꯐꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯤꯟꯐꯝ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ
8: ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯄꯨꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯕꯥꯃꯣꯟ ꯀꯝꯄꯨꯗꯒꯤꯅꯤ ꯑꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯖꯔꯤ
7: ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯒꯤ ꯀꯔꯝ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯥꯕꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯥꯕꯤꯕ
8: ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯖꯔꯛꯏ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯖꯔꯤ 3:30 ꯄꯥꯎꯁꯤꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯂꯤꯂꯥꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯖꯔꯤꯁꯤꯅ ꯊꯥꯡꯖ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯗ 3:30 ꯄꯥꯎ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯂꯤꯂꯥ ꯁꯤꯔꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯇꯥꯖꯩ
7: ꯑꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯥꯕꯗꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯗꯤ ꯐꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯖꯦꯜ ꯍꯟꯖꯦꯜꯒꯨꯝꯕ ꯁꯦꯝꯗꯣ ꯈꯣꯠꯇ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ꯭ꯔꯥ
8: ꯄꯥꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯡꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯄꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯁꯤꯟꯖꯩ
7: ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯆꯤꯊꯤ ꯏꯕ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯤ ꯂꯩꯕꯤꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ
8: ꯍꯣꯏ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯕꯀꯥꯟꯗ ꯐꯪꯗꯕ ꯈꯣꯠꯇꯕꯗꯤ ꯂꯩꯈꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯛꯁꯦꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯍꯪꯅꯤꯡꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯐꯣꯟ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯖꯈꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯈꯤꯗꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯁꯀꯨꯜ ꯇꯝꯃꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤꯌꯥꯡ ꯈꯛꯇꯪꯅ ꯏꯁꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯈꯟꯖꯤ ꯈꯣꯠꯁꯤ ꯆꯤꯊꯤ ꯏꯔꯒ ꯀꯥꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯇꯧꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯤꯊꯤꯁꯨ ꯏꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯁꯩꯗꯨꯗꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯈꯟꯕꯤꯌꯣ ꯀꯥꯏꯅꯒ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯤꯡꯖꯪꯉꯒ ꯂꯩꯍꯧꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩ ꯑꯃꯨꯕ ꯂꯩꯆꯤꯜꯂꯅ ꯇꯧꯕ ꯏꯁꯩꯗꯣ
7: ꯈꯨꯟꯗꯥꯛꯐꯝ ꯀꯨꯟꯖꯕꯤꯌꯥꯔꯤꯅ ꯁꯛꯄ ꯑꯌꯦꯛꯄꯝ ꯏꯔꯥꯃꯅꯤꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯏꯁꯩ ꯃꯌꯦꯛꯅꯤ ꯁꯣꯝꯅ ꯄꯥꯝꯕꯤꯔꯤꯁꯦ ꯃꯌꯦꯛ ꯇꯔꯥꯇꯒ ꯁꯨꯗꯔ
8: ꯃꯌꯦꯛꯇ ꯀꯩꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯥꯊ꯭ꯔ ꯌꯥꯝ ꯆꯦꯟꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯖꯈꯤꯕ
7: ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯖꯔꯦ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯗ ꯁꯤꯗꯤꯁꯨ ꯏꯗꯕ ꯇꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯈꯟꯗꯕ ꯐꯣꯟꯁꯨ ꯇꯧꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯇꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯗꯤ

0: western music ki thoram tavire akashwani imphal haujik amok tavire se saknai rabe singi wari lanthok piri be ningthaujam lembisna manipur ge ahanba feature film matam gi manipur na ihan hanba release tawba numit asida angauba phijang dagi ahanba oina mitai lon nganglakpadu tabada manipuri bhabok singdo ahanba oina matam gi manipur yengbada pukning thumhatki film do da ibotombina matai matambakta kari yansang thongi teima haiba ahanba dialogue tungangnakpada bhabokna hauna nokhi hauna nokpagi maram hangbada nungaibagi nokpani haina bhabok singna phongdokhi film asida matai matampaki saktam langkhibi acting gi lamda mana mathum kaya phangkhrabi maming leirabi actress mahak adudi atai kana nate yengkhom romani ngasi sangnai raba singi wari paring asida pujarakli yengkhom roma gi samlappa wari yengkhom roma ingkum listing amaga chamapan nifumonga gi september tang kulhum doida lilong sajing da poi lilong sajing da poklabasu maruaina haurak chaurak padi yai school dani apokpa mapabungi mingna yengkhom birendra aduga apokpi mama gi mamingna yengkhom ongbi mani devi kawi punna machin manau tarani nupa ahum nupi taret romana ani shubi macha nupini yengkhom roma class 3 dagi 10 fawba tampasna school da tamlakhi aduga gp women's college dagi graduation pass tawki amade manipur legislative assembly da reporter oina thabak tawki mahaki acting gi lambi shi mahakna tampasna school da tamlingai dagi theater gi lamda khongda bahurakhi mahak rup raga gi artist amani rup raga si matam amadadi jagoi isai amadi theater drama gi sangsthan ama oirami haujik mayamna khangnaribadi rup raga sangsthan asi ingkum lising amaga chamapan humphuda register tawkhibani yengkhom roma ingkum lising amaga chamapan humphuda reta all india radio imphal gi approved dharma artist oikhi kharadang pallabada moirangthem inau gi anuradhapur ashram gi rajkumar amadi maharaj kumari binodini gi nong phadok lakpada hairiba lila ani asida english singa maga chamapan marifuda akashbani award funki all india radio imphal gi lila samhena yengkhom romana ektoki manipur gi ahanba feature film ase nam nabagidamak manipur gi ahanba producer karam monomohan mayamna amumacha hairaga hena khangnaba asina mahaki apokpa karam toyaimagi mingda kt films private limited koba banner amalingi madugidamak karam amumachana local pausi singda artist sing kobagi advertisement tawki ahanba feature film matam gi manipur ase kunsuba national film award lising amaga chamapan humputara nithoida manipuri lolda best regional film taki new delhi da pangthokiba manayen thokpagi thoramda president bb girina film producer karam monomohan amasung director debakumar bose da president silver medal amasung sel oina lupa lising manga amamam khuchinakhi film dugi leading actor G. Ravindra Sharma amasung actress Yengkhom Roma su souvenir amamam piduna ikai khumnaba utke film sida yaukiba chongtham kamalana sakpa isai tha tha thabungton hairiba isai ase Yengkhom Roma na lambi satpa matamda angang singna Roma hek ubaga tha tha thabungton haina isai saksilakpa phawba yauki mahangna kumkiba film singdi matamgi manipur listing amaga chamapan humputara nithoi lamja parshuram listing amaga chamapan humputara mari olang thagi wang madasu listing amaga chamapan marifu paukum ama listing amaga chamapal marifu humdoi mayofi gi macha listing amaga chamapal hum marifu tara mari aroi ba bidai listing amaga chamapan marifu tara mapan ningthem listing ani mapal imphal ningol listing ani tara nong phadok lakpa atithi listing ani tara mapan yengkhom romana acting khatna tana documentary film jagoi da kathoklabi surjamukhi devi gi direction pikhi asangba nongjabi film da assistant director oina thabak tawki english singani tarahum doida international film festival of india da indian panorama section ge jury member oina sharugya ki tarani thoi shuba manipur state film award lisingani tarama panda lifetime achievement award piduna ikai khumnaba utki
1: ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯈꯤꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯂꯦꯝꯕꯤꯁꯅ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯠꯗ ꯍꯤꯟꯗꯤꯗ ꯄꯥꯎ ꯐꯪꯕꯤꯔꯒꯅꯤ꯫
2: भारत और बेल्जियम अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर के साथ वार्ता की। दोनों देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौते पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बेल्जियम के रक्षा मंत्री टेओ फ्रॉन्कन ने संवाद, उच्च स्तरीय यात्रा और क्षमता निर्माण के माध्यम से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को विस्तार देने की प्रतिबद्धता जताई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने एआई डेटा केंद्रों और वैश्विक क्षमता केंद्रों पर सरकार का दृष्टिकोण दोहराया। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से अन्य क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ा और किदाम्बी श्रीकांत कनाडा के विक्टर लाई को हराकर चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। भारत और बेल्जियम ने नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर क्राइम और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन और रक्षा सहयोग पर आशय पत्र सहित विभिन्न समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने परस्पर संबंधों के संपूर्ण आयाम तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है, इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है।
3: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
2: श्री मोदी ने कहा कि भारत और बेल्जियम के संबंध दीर्घकालिक हैं। उन्होंने कहा कि प्रथम विश्व युद्ध में बेल्जियम में हजारों भारतीय सैनिकों का साहस और बलिदान दोनों देशों की साझा स्मृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि वो 10 साल पहले बेल्जियम गए थे और पिछले एक दशक में दोनों देशों के बीच भागीदारी में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
3: पिछले एक दशक हमारी साझेदारी ने उल्लेखनीय प्रगति की है। आज हमारे सहयोग का दायरा ट्रेडिशनल सेक्टर से आगे बढ़कर डिफेंस और क्लीन एनर्जी जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों तक पहुंच चुका है। हम जोरावर टैंक जैसे आधुनिक रक्षा उपकरणों पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हम दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन एमोनिया प्रोजेक्ट में से एक डेवलप कर रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला दोनों देशों की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि नवीकरणीय ऊर्जा पर आज हुए समझौता ज्ञापन से सतत सहयोग को नई गति मिलेगी।
3: रिन्यूएबल एनर्जी पर आज हुआ एमओयू हमारे सस्टेनेबिलिटी सहयोग को नई गति देगा। क्रिटिकल मिनरल्स में हमने प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। सेमीकंडक्टर्स में बेल्जियम की एक्सपर्टाइज और भारत का स्केल एक दूसरे के पूरक है। इस दिशा में हम बेल्जियम के आईमेक इंस्टीट्यूट को भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से जोड़ने के लिए मिलकर काम करेंगे।
2: वार्ता में भारत और बेल्जियम अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। इससे पहले बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने आज सुबह राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वो 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में वे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के एक व्यापार कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने ये बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री टेओ फ्रॉन्कन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही।
4: द वर्ल्ड इज विटनेसिंग ए टाइम ऑफ ग्रेट।
5: ये दौर गंभीर राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल का रहा है। इन परिस्थितियों में हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने उनका मजबूती से सामना किया। ऐसे समय में आपके जैसे मित्र और महत्वपूर्ण साझेदार से मुलाकात विचारों और अनुभवों के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है।
4: रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर।
2: बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रांकन ने भारत को घनी आबादी तथा उच्च प्रौद्योगिकी वाला देश बताया। उन्होंने दोनों देशों के बीच मित्रता को और आगे ले जाने की भी बात कही।
6: भारत और बेल्जियम मित्रता साझेदारी के साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। हम भारत से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बेल्जियम एक तकनीकी रूप से विकसित देश है और उन्नत तकनीक हमारे लिए खासकर यूरोप में बहुत महत्वपूर्ण है। भारत जैसे देश के साथ भविष्य की परियोजनाओं में सहयोग हमारे लिए बेहद जरूरी है।
2: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोग संवाद, उच्च स्तरीय यात्राओं, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के जरिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
2: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास की चर्चा की। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी जिक्र किया। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अमरीकी बैंक के सहयोग से भारतीय वाणिज्य दूतावास ने सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक व्यवधानों और चुनौतियों के बावजूद भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रमुख क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा केंद्रों को बढ़ावा देना, वैश्विक क्षमता केंद्रों का समर्थन करना, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करना और बैंकों के निष्पादित परिसंपत्तियों को कम करना शामिल है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने कहा है कि 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही है। ये दर्शाती है कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। श्री क्वात्रा ने भारत सरकार और वित्त मंत्री सीतारामन की ओर से न्यूयॉर्क में अमेरिका के प्रमुख शेयर बाजार नैसडैक के कारोबारी सत्र का शुभारंभ करने पर ये बात कही। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी में 7.8% की वृद्धि हासिल करने में लघु और मध्यम उद्यम उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। उन्होंने नई दिल्ली में मुक्त व्यापार समझौता एफटीए आउटरीच कार्यक्रम पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में ये बात कही। भारत और फ्रांस ने वस्त्र और फैशन क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए पेरिस में समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक बाजारों में भारतीय वस्त्रों और कौशल को बढ़ावा देना है। भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन और प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनिम ने वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनिम विश्व का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र और फैशन व्यापार मेला है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि नवाचार, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी कीमतों के बल पर भारत में विश्व की नंबर एक ऑटोमोबाइल उद्योग बनने की क्षमता है। उन्होंने नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के 66वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि देश की आर्थिक वृद्धि में इस उद्योग का योगदान लगातार बढ़ता रहेगा।
8: साइज ऑफ द इंडस्ट्रीज
9: ऑटोमोबाइल उद्योग का कुल आकार करीब 22,75,000 करोड़ रुपए है। देश के कुल जीएसटी संग्रह में ऑटोमोबाइल उद्योग का योगदान लगभग 15% है। यह उद्योग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 4 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। वर्ष 2025-26 ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए महत्वपूर्ण रहा है। इस दौरान उद्योग के निर्यात में 24% की वृद्धि दर्ज की गई।
2: श्री गडकरी ने भारत नई कार मूल्यांकन कार्यक्रम को एक बड़ी सफलता बताया। उन्होंने कहा कि 11 कंपनियों के 30 से अधिक वाहन मॉडल पहले ही प्रमाणित हो चुके हैं। इस कार्यक्रम ने प्रशिक्षण लागत को काफी कम कर दिया है, साथ ही वैश्विक बाजारों में भारतीय वाहनों की विश्वसनीयता को भी मजबूत किया है। उन्होंने घोषणा की कि इस कार्यक्रम का दूसरा चरण अगले वर्ष अक्टूबर से प्रभावी होगा, जिसमें दुर्घटना से बचाव, पैदल यात्री सुरक्षा और दुर्घटना के बाद निकासी सहित उन्नत सुरक्षा मानक शामिल होंगे। श्री गडकरी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए हाल ही में स्वच्छ परिवहन के लिए शुरू की गई परिवर्तन योजना के बारे में जानकारी दी। पंजाब में सरकारी शवगृहों में रखे अज्ञात और लावारिस मृतकों की पहचान के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक पहचान पोर्टल पहचान शुरू किया गया है। एक रिपोर्ट।
10: ये देश में अपनी तरह का पहला पोर्टल है जो भारत और विदेश में रहने वाले लोगों को दुर्घटनाओं या अन्य कारणों से जान गंवाने वाले अपने प्रियजनों की पहचान करने में मदद करेगा। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अकेले पंजाब में लगभग 5 से 6 हजार मृतकों की पहचान नहीं हो पाती है। पंजाब के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने कल इस पोर्टल की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि पहचान पहल के अंतर्गत पंजाब के किसी भी सरकारी शवगृह में पोस्टमार्टम के 48 घंटे के भीतर प्रत्येक ज्ञात और लावारिस शव की चेहरे की तस्वीर, जन्म चिन्ह और शारीरिक विकृतियों जैसे चिन्हों के साथ उसका विस्तृत शारीरिक विवरण पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। राज्य के सभी 23 जिले और 346 सरकारी अस्पताल इस पोर्टल से जुड़े हुए हैं। जलंधर से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
2: ये आकाशवाणी है। बिहार में पटना और कई अन्य जिलों में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इससे नए इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
11: आपदा प्रबंधन विभाग ने गंगा के बढ़ते जलस्तर को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार पटना के गांधी घाट पर आज रात और मोकामा के हाथीदह में कल दोपहर गंगा का जलस्तर उच्चतम बाढ़ स्तर को पार कर सकता है। भोजपुर, पटना, सारण, वैशाली, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद के नदी किनारे तथा निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और जोखिम से बचने की अपील की गई है। आपात स्थिति में राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के 1070 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
2: वहीं झारखंड में भी पिछले कुछ दिनों से तेज बारिश के बाद कई हिस्सों में बाढ़ और जलभराव की स्थिति बनी हुई है।
12: रांची में गेतलसू डैम के 4 रेडियल गेट खोले गए हैं, जबकि स्वर्णरेखा नदी के तेज बहाव को देखते हुए हुनरू फॉल और नदी किनारे के इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जमशेदपुर में कल शाम मांगो पुल के पास स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर 121.26 मीटर दर्ज किया गया, जबकि आदित्यपुर पुल के पास खरकई नदी 129.76 मीटर पर बह रही थी। हालांकि मंगलवार की तुलना में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है, लेकिन खरकई नदी अब भी खतरे के निशान से 7-6 सेंटीमीटर ऊपर है। प्रशासन ने नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और किसी भी स्थिति में प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से टेलीफोन पर बाढ़ की स्थिति और राहत शिविरों में व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी फर्रुखाबाद जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की और बाद में प्रभावित लोगों को जमीन के पट्टे और राहत सामग्री बांटी। इस बीच मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, सिक्किम, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में गरज के साथ बारिश का अनुमान लगाया है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, महाराष्ट्र, उड़ीसा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर बाद मिला जुला असर देखा गया। सेंसेक्स 19 अंक बढ़कर 76,590 पर और निफ्टी 6 अंक घटकर 23,908 पर पहुंच गया। और अब बात खेलों की। किदांबी श्रीकांत ने चीन मास्टर सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में श्रीकांत का सामना हांगकांग के ली चेक लियू से होगा। उधर महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में तन्वी शर्मा को जापान की तोमोका मियाजाकी से हार का सामना करना पड़ा। महिला एशिया कप 20

ट्वेंटी क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। ये मैच दुबई में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और बेल्जियम अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर के साथ वार्ता की। दोनों देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रॉन्कन ने संवाद, उच्च स्तरीय यात्रा और क्षमता निर्माण के माध्यम से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को विस्तार देने की प्रतिबद्धता जताई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से अन्य क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा। और किदांबी श्रीकांत कनाडा के विक्टर लाई को हराकर चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी इम्फाल का कंगना चैनल है। मीडियम में 340.1 मीटर अर्थात 882 किलोहर्ट्ज़ पर फौजी भाइयों का कार्यक्रम अब आरंभ होता है। फौजी भाइयों, आपकी सेवा में प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आगाज करते हैं फिल्म दिल चाहता है से श्रीनिवास की आवाज में इस गीत के साथ। गीतकार है जावेद अख्तर और संगीत शंकर एहसान लॉय का।

अगला गीत प्रस्तुत है फिल्म जाने तू या जाने ना से रशीद अली और वसुंधरा दास की आवाज़ों में, गीतकार है अब्बास तायरवाला और संगीत ए आर रहमान का।

अभी आपने सुना फिल्म वेकअप सेठ से कविता सेठ और अमिताभ भट्टाचार्य का गाया गीत। गीतकार थे जावेद अख्तर और संगीत अमित त्रिवेदी का। फौजी भाइयों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी इम्फाल के कंगला चैनल पर प्रसारित कार्यक्रम फिल्म संगीत। अब सुनते हैं फिल्म जब वी मैच से मोहित चौहान का गाया गीत। गीतकार है इरशाद कामिल और

कार्यक्रम की आखिरी पेशकश फिल्म रोजा से एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा की आवाज़ों में गीतकार है पीके मिश्र और संगीत ए आर रहमान का।

0: 남다리 남다리 거 있나?
1: 잔두방 고영강.

山土方官有单位哟。哎，俺屋内外谁来？

গলি দুই কুম জোয়াল গঙ্কাল খতু নাম আল নাই।

누라이비에 마 퇴비니 감노니 마코이 오음시나 남릴 록딱 빠야이 빵락 빠두디 파제이다 누라이비에 마 퇴비

0: brand gr yamna kanaraba logi vitamin amani brand gr season abana phau pambi bu leina tina dagi ngakthokpa ngami phau pambi bu macha hena puthok handuna puthok hengalali saudam thiba amadi mara satpangamdaba pambi sing ham ham lawna chaholi brand gr season abana hargi chang hantha hanbaya sangam amada supna tagi kg ani dagina kg ani makai phawwa season abaya fangfam adom gi manak nakpa tilhat hidak yonfam sing season abiyu brand gr
1: MBA tamningba mahiroi singi nungairaba pau Manipur ge amata ngairaba private management institute ama oiriba Yaima Institute of Management Studies awang posangbam kulenda academic session lisingani kuntaru kuntareti oina chahi ani gi full MBA course tamnaba gi damak admission form thaba hojare AICTE na approve tawbaga loinana DM University the affiliate tawraba institute asida attractive scholarship ki opportunity su phangbigani mahiroi khuding makta free laptop amadi IIM singumba maming leiraba business school singda exposure gi khudong cha basu pijagane admission tawbina bagi damak tangai fadaba criteria amadi tam sing khangbina bagi damak 8798457778 natraga 8787524310 da contact tawbio natraga head office yaima I hospital khagempali da laktuna tanabio
2: season abiu kebuka ಹೋಗಿ ಸಾಥಿರ ಪತಿಲ್ ವಾಹಿ ಕಮದಿ ನುಂಗ್ಯಂಗಿ ದಮಕ್ ಯು ಪಿ ಎಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪುಥೋಪ ಮಲೇಮ್ ದ ಮತ ಆರ ಪತಿಲ್ ಆರ್ ಹಿದಾಕ್ನಿ ಕೇಬುಕಾ ಲೌ ಸಂಗ ಮಮದ ಕೇಬುಕಾ ಕಿಲೋ ಅನಿದಂಗ್ ಸಾಯ್ಕಿಬದ ಸಾಯ್ಕಿಬ ನುಮಿತುದಗಿ ನುಬಿದ್ ಹುಂಪುತ್ರ ತರೆತ್ ಫಾವುದಿ ವಾಹಿ ಕಮದಿ ನುಂಗ್ಯಂಗ್ ಆಥೋಕಿಬನ ಫೌಲೋಕ್ಪ ಫಾವುದ ವಾಹಿ ಕಮದಿ ನುಂಗ್ಯಂಗ್ ತಾಗನೆ ಹೈಬಗಿ ಅಕೀಬ ಲೇರರುಯಿ ಸಿಜಿನ ಬಿಯು ಕೇಬುಕಾ ಕೇಬುಕಾ ಫಂಗ್ ಫಂ ವಾಯ್ನ ಬ್ರೂಸ್ ಥಂಗಾಲ್ ಬಜಾರ್ ಇಂಫಾಲ್ ಮದಿ ಅತೆ ಲೋಹಿದಾಯೋನ್ ಪಂ ಸಿಂಗ್
1: Lomi Ichilinau Singi Nungai Rabba Pau Jel Lagliba Lauruk Pantha Sida Sijina Nabagidamak Lau Yai Naba, Lau Khao Naba Charu Pun Naba Lau Khoi Naba Tractor, Lau Khao Yai Mechina Chingba Mangjau Nana Laibi Ningba Singda Lupali Sing Kuntra Dagi Lupal Lag Amma Pau Bagi Discount Pijari Loinana Mangjau Nana Booking Taubi Nabagi Khudong Chaba Sutham Jari Ngashimak Kwaketel Haino Khong Nembi Near Lam Dong Ground Manakta Laiba ISO Certified Fung Laba EDC Agro Division Farm Da Lag Biduna Akupama Rol Khang Biraba Yagane
3: Hare Krishna Mamangi Sahi Singda Panthok Pagum Hayeng Krishna Janmashtami Numitta Airport Road Ta Laiba Radha Krishna Chandramani Mandir Skonda Ayuk Angan Badagi Hauna Krishna Janmashtami Ga Mari Lainaba Tangai Phadaba Laiyoiba Thauram Sing Panthok Sagani Life Member Bhakta Vaishnob Amadi Bhagavan Budorson Taubiningba Iraisa Singna Saruk Yabiranaba Nolukna Paujen Jari Loinana Krishna Janmashtami na lakpasida ing tappa iramdam ama oihenbinaba Bhagavan Sri Krishna da nijari haina skon gi bhakta singna paujel lakli
4: Akaswani Imphal housing numidangi pungtarit makhai tari Manipuri da pau tavirasi
5: Akaswani Imphal ngangom kirana pau pajari ahanbada maruiba pau mukhyamantri yumnam khyamsana hairi panchayat amasung autonomous district council gimikhal athu matam da pangthokna bahonari porpham phamni bi imaibel sing sentok hengat anaba sarkar na anob thaurang ama hokdok lagani haina mukhyamantri yumnam khyamsana hairi apunba idp lising humphugi manung da lising kuntra taruk masa masa gi mayum da hanjilhan kre haina mukhyamantri yumnam khyamsana phongdok kre Bhagavan Sri Krishna gi mapok numit Janmashtami na lakpada lusingba kayana yaifa paujel pirakli amasung Bharat amasung Belgium na lalol itik amadi sel thungamari lenaba lamsingda henna tengbang pinana ba yanare Mukhyamantri Yumnam Khyamsana Hairi panchayat amasung autonomous district council gi mikhal athu matamda pangthokna ba honari Hauzik delimitation ki thabak chathari. Ngasi Manipur Vidhan Sabada, Congress ki ke mega sandrana pukhalakpa, calling attention motion amage paukhumda Mukhyamantri nahai, Supreme Court ki ruling amana panchayat ki three-tier system laigida bani hairak padagi, haana delimitation haururaga matam nanglaroi haina lepki bani. Maan hai, tarataruk Shubha Finance Commission dagi sel lokthaba yanaba si ijage, commission dagi phangadaba senpam ADC ki oinadi committee siyamlaga lokthaba yai. Mukhyamantri Nahai
6: panchayati bose chawna kem gatte koi wale lorure at the same time honorable high court ki directive sulle so election ki process hi haura kanda supreme court ki ruling amale ki ba du ba three tier system koi gato bani na three tier system sigi delimitation ki process haur pada election si postpone to daga di nagaru ena koi decision na report bibi report number mara kanda election si postpone to wori ujit dum delimitation ki process is sada jari to atu matam da election dongna ba dum honors again
5: मुख्यमंत्री यमुनाम खेमसान हायरी मणिपुर की हेल्थ सेक्टर हेन फगन अनब सरकार अंगम थाकते कन्न होनरी कांग्रेस की सूरज कुमार ओक्रम नंगसी मणिपुर विधानसभा पुखलकपा कॉलिंग अटेंशन मोशन नमगी पाउकुमदा हेल्थ अमसुंग फैमिली वेलफेयर की थबक सुपूरीबा मुख्यमंत्री नहाई राज्य सिदा हेल्थ सेक्टर फगन अनब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मंगा अमसुंग मेंटल हॉस्पिटल यौना प्रोजेक्ट मंगा पाइकली थौबाल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज ओंथोनबगी वाफम खनसी हाइकी मुख्यमंत्री यमुनाम खेमचान मखा तानहाई राज्य सिगी हौजिक वारिब फिबमसिना डॉक्टर सिंगी सथोक चसिनदा खुदोंगचादब कया मायोकनारी अदुमोइनमक सरकार असिना अनाय लायिंग संगसिंगदा डॉक्टर अवार्ड पले हिंदन भोनारी सिंगी मनु हुंजिन मवाफम सिंगी ओइना मोबाइल मेडिकल क्लिनिक तरहमदोय हांग्रे मिरोन बिममा सिंगी अनाय लायिंग देहेन खुदोंगचाहनबा सिंगी जिला सिंगदा एम्बुलेंस कुंथ्राहमदोय सुपी कि ब्लेरे मुख्यमंत्री यमुनाम खेमचान हायरी नौमगी सरा तालीब इमा इबेल सिंह सेंथोक लंबी हेंगत हननब सरकार अनौ याफे थौरंग हौदोकनब होनरी कांग्रेस की सूरज कुमार ओक्रम नंगसी मणिपुर विधानसभा की निपान सुब मिफंगी वहंग पाउकुमगी मतमद पुखलकप वहंग अमगी पाउकुमद मुख्यमंत्री नहाई सरकार न पाइखलीब याफे थौरंग सिंगसी मरुओइना नुपी सिंगबु मसा मरुमदुम लेपसब गमहनबगी पानदमद पाइखलकपनी थौरंग असी राज्य सरकार की मिजें मखाद पाइखेटपनी थौरंग असी की मखाद तोंगान तोंगानब सेल्फ हेल्प ग्रुप सिंह सेल की तेंबांग सिंह पीरी मखा ताना सेल्फ हेल्प ग्रुप यौहद्रब नौम की चरा तानजरीब इमा इबेल सिंह सेल की तेंबांग पीनेनब सरकार अनब थौरंग पाइखेटनब खनब लेरे थौरंग असी चलीब था असीद हौदोकनब पानदम थमली लैलोन वाईफाई की थौदोक चेनबनी चिंगनब मियोय मरी फारे मियोय मरी अमसु फानब होनरी है राज्य की गृहमंत्री गोविंद दास कौथौजमना मणिपुर विधानसभा फोंदोखे कांग्रेस की के रंजित हंगलप वहांगे पाखुम पीरदना श्री गोविंद दास नहाई नागा मिशम तरुक हाथीब की थौदोक मरी लेना चिंगनब मियोय अनी फारब मखोयना हाइदोरपदगी मियोय अनी अमसु फाखी मखोयद मखा तान वहांग पाहुंग चथबदा थौदोक अदुद चेनब मियोय मरी की मिंगसु हाइदोरखी हौजिक हौजिक एन आई ए ना हाइरिब मियोय मरी अदु फानब थीब हमगे थबक कन्न सथरी सही असी अप्रैल तरह ट्रोंग लाउबी अवांग लेकाई दा बोम पोखाई हेंदुना पिकलीब मसिन मौपा हाथीबगी थौदोक अदुग मरी लेनना के रंजित पुखलकप वहांगी पाउखुमद मंत्री नहाई ट्रोंग लाउबी की थौदोक अदुग मरी लेनना हौजिक फाउबद चेनबनी हाइब मियोय अमा फारे मियोय असी मथकता एन आई ए ना वहांग पाहुंग चथदुना मखा तान थिजल्ली
7: ꯌꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯃꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯍꯦꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯋꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯦꯜ ꯒꯣꯃꯦꯟꯅ ꯂꯥꯏꯊꯣꯛꯄ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯇꯥꯏꯝ ꯇꯨ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯔꯁ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯋꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ ꯃꯔꯤ ꯐꯥꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯅꯗꯔ ꯃꯔꯤ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯟꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯋꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯗꯦꯂꯤꯚꯔ ꯇꯨ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯠꯅꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨ ꯏꯕꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ 2023 ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯖꯁꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯝꯃꯤꯁꯟ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤ
5: ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯕꯤꯙꯥꯟ ꯁꯚꯥꯒꯤ ꯖꯤꯔꯣ ꯑꯋꯥꯔꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯦ ꯄꯤ ꯑꯦꯒꯤ ꯀꯤꯝꯅꯤꯌꯣ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞ ꯍꯪꯁꯤꯡꯅ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯇꯤꯞ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯃ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯍꯦꯗ ꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯔꯁꯇ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯅꯕ ꯇꯛꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯖꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯁꯤꯡꯗ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯅ ꯆꯪꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯥꯡꯊꯛꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯐꯪꯍꯟꯕꯤꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯛꯁꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟ ꯐꯒꯠꯍꯟꯅꯕꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯁꯚꯥꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯈꯤ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯅꯥꯇꯦꯟ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃ
8: ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯇꯤꯆꯔꯁ ꯐꯣꯔꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯒꯣꯜꯗꯟ ꯖꯨꯕ꯭ꯂꯤ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯡ 5 ꯊꯥꯡꯖ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯇꯥꯛꯌꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯗꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯝꯗ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜꯒꯤ ꯄꯨꯡ 2:30ꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯇꯤꯆꯔꯁ ꯐꯣꯔꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯅꯕ ꯄꯥꯎꯖꯦꯟꯖꯔꯤ
9: ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯤꯅꯦꯛ ꯃꯁꯤꯟ ꯂꯩꯔꯕ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯔꯦꯗꯤꯌꯦꯁꯟ ꯊꯦꯔꯥꯄꯤ ꯑꯥꯏ ꯖꯤ ꯑꯥꯔ ꯇꯤ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯝ ꯑꯥꯔ ꯇꯤ ꯔꯦꯄꯤꯗ ꯑꯥꯔꯛ ꯑꯦꯁ ꯑꯥꯔ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯁ ꯑꯥꯔ ꯇꯤ ꯑꯦꯁ ꯕꯤ ꯑꯥꯔ ꯇꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯅꯥꯔꯕ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤꯡꯗ ꯚꯤ ꯃꯦꯠꯀꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯀꯦꯟꯁꯔꯒꯤ ꯃꯩ ꯌꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯠ ꯃꯈꯜ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯩ ꯌꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯎꯍꯟꯗꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯤ CMHT PMJAY Health Card amasung government employee singi su khudong chaba pizari Dr Singhna tumor board phamduna anaba singi laiyeng da chaungna mating pangli akupa marol gi damag NABH phanglaba AOI Babina Speciality Hospital Sajiva Jail Road Khabaisoi Imphal East ta tanabiu
5: tabiriba pawasi akashwani imphal lagini Mukhyamantri Yumnam Khyamsa Nangasi Manipur Bidhan Sabha da haikre apunba IDP Lising Humphogi manungda Lising Kuntra taruk masa masa gi mayumda hanjilhankre Sabha da ngasi Congress ki TS Lokeshwar na pukhelakpa short duration discussion namage paukum piraduna Mukhyamantri na hai IDP Lising Kunmari na haujik rajasi ki tongan tonganba relief camp sing sangja phamlog duna lairi Mukhyamantri na hai mamang thada tongan tonganba IDP Singhi association taret longa unaduna makhoi gi mayumda hanjinaba gi matangda wari shanaki masag memda hanjinduna laikraba IDP Singh yauna punna IDP Lising yankai mapan romda selgi tangbang sing piri masigi mathakta irang asina maram oiduna wakhalda awawakya

ओइना पाई बस नाबुल ये आई दबू ताऊहंगे लगना रुगे नसीदी साना रुगे कुमाई तुम लगना रुगे नसीदी साना रुगे कुमाई तुम

0: रुगे नसीदी, लग्न रुगे नसीदी, लग्न रुगे नसीदी हो लग्न
1: तविरे आईबम बुधचंद्रन सबैशे अरुबदलेजरे हमोम नवन सब तबुनंगी से

아두디 빠샤꾼 삐바 성공기 미타이니 따라 삐베야 우리 아이기 미타이 짜르바디 아이굼 빵근 흥근이 아이기 미

बाबू नचा की करी ले दी रे अरे नचा तो पिजबा मैं आप

ಮಗ ಲೈಬಿಕೋ ಶುಭ್ನಗಿ ಪಶಾಕುಂತನಿ ನಚಾನ ಹರಾವ ಎಣುಚೋ ಹವಾಯ್ ದಾನ ನೋಚೋ

लालिबदी ऐनी मधंग लोखचरीव फिल्मने सैसकली पुष्परानी सैरिंग अजित कुमार एलांबा सैरांबा आनंद इसेसीबु खैदादना पोस्टकार्ड खत्थाबीरकली मरुसिंगना पासवे पार्ट फोर लाय हराबु मनाकदगी हिजम अजीम मरुगी से खुदल दौचिरी।

केराकै थिल यिंखोम लेरक्तगी हिजम कामेशो टेकचम दगी हुइद्रोम थ्वइबी मरुबनिना तबिनिनि हाइदन खनबिरगली मम्मी सामी फुमदगी लक्ष्मी जितान सक्पा गिगिन सेरेंगबा मदी आरकी बिरेन्द्र जितन सेरेंगबिशे मरुब सिंगी से कुदल तौजिरी।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम हर सिंगार में आपका स्वागत है। अभी आपसे रूबरू हो रहा है आपका ये दोस्त शमीम खान। दोस्तों, आज की ये शाम कुछ खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे उस एहसास की जिसे शब्दों में बांधना आसान नहीं, जिसे महसूस करने के लिए कभी कभी सिर्फ एक मुस्कान काफी होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोहब्बत की, जो कभी किसी की आवाज में सुनाई देती है तो कभी किसी की आंखों में दिखाई देती है और कभी किसी खामोशी में भी बहुत कुछ कह जाती है। तो आइए आज की इस खूबसूरत शाम में हम कुछ ऐसे गीतों का सफर शुरू करते हैं जिनमें मोहब्बत की अलग अलग तस्वीरें छिपी हैं। कहीं पहली मुलाकात है, कहीं इंतजार है, कहीं इजहार है और कहीं बस किसी के होने का सुकून है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत से जिसमें प्यार की बहुत ही मासूम सी दस्तक है।

0: दोस्तों कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हाजिर होता हूँ एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, अ मोमेंट वेयर लीडर्स, इनोवेटर्स, बिजनेसेस एंड कम्युनिटीज फ्रॉम द ब्रिक्स नेशंस कम टुगेदर टू स्ट्रेंथन पार्टनरशिप्स। India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: दोस्तों कार्यक्रम चला है हर सिंगार, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अभी आपके साथ है आपका दोस्त शमीम। दोस्तों कहते हैं कि प्यार में इंतजार बहुत लंबा होता है, घड़ी की सुइयां जैसे धीरे धीरे चलती हैं, एक मिनट एक घंटे जैसा लगता है, फिर जब वो सामने आता है तो लगता है इंतजार का हर एक पल सार्थक हो गया। मोहब्बत में शायद सबसे खूबसूरत चीज होती है इंतजार, क्योंकि इंतजार में उम्मीद होती है और उम्मीद में एक खूबसूरत सा ख्वाब कभी

दोस्तों, कुछ गीत सुने नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं, और कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जिन्हें सुनते ही मन अपने आप अतीत की किसी गली में चला जाता है। मोहब्बत सिर्फ साथ होने का नाम नहीं होता है, बल्कि कभी कभी मोहब्बत का मतलब है किसी की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेना, उसकी पसंद याद रखना।

दोस्तों, उम्मीद है कि एफएम गोल्ड की यह शाम आपके दिल में भी किसी खूबसूरत याद की तरह ठहर गई होगी। और अगर इस वक्त आपके दिल में भी किसी का ख्याल आ रहा है तो मुस्कुराइए, क्योंकि किसी का ख्याल आना भी तो मोहब्बत की निशानी है। इसी खूबसूरत एहसास के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त दा वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद को खत्म करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर सफलतापूर्वक वार्ता पूरी होने का स्वागत किया है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश बताया।
2: 20 साल में बेल्जियम के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ आना बहुत लंबा समय है। इन 20 सालों में भारत बहुत बदला है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के दौरान तो और भी ज्यादा बदलाव हुआ है। आज भारत न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश भी है। भारत आर्थिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक बड़ी ताकत है और एक महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल फैक्टर भी बन गया है। भारत की आवाज इस क्षेत्र से कहीं आगे तक सुनी जा सकती है।
0: वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों देशों ने फार्मास्यूटिकल्स, जीव विज्ञान, सेमीकंडक्टर, रक्षा विनिर्माण, महत्वपूर्ण खनिज, नवीकरणीय ऊर्जा, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स, अंतरिक्ष और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बेल्जियम की रक्षा कंपनियों से भारत की विनिर्माण क्षमता के साथ अपनी तकनीकी विशेषज्ञता को जोड़कर संयुक्त रूप से रक्षा उपकरण विकसित करने का आग्रह किया। नई दिल्ली में भारत बेल्जियम रक्षा सीईओ बैठक में उन्होंने साइबर सुरक्षा, एआई आधारित ड्रोन, पानी के भीतर इस्तेमाल होने वाले वाहनों और उन्नत हथियार प्रणालियों जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। बेल्जियम के रक्षा और विदेश व्यापार मंत्री थियो फ्रांकेन ने भी दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में औद्योगिक सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर जोर दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू

0: उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने में मदद करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यह युद्ध का युग नहीं है और किसी भी समस्या का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं हो सकता। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो दिन पहले किर्गिस्तान के बिश्केक में दिए बयान को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करने का समय है। डॉ जयशंकर ने यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। वहीं यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का स्वागत किया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। बैठक में समुद्री सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों तथा मानवीय सहायता और आपदा राहत के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। नेपाल तिब्बत में आए विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1252 हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 4216 लोग अब भी लापता हैं। भारत ने नेपाल के लिए दो और विमानों के जरिए आज 21.5 टन राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। महिला क्रिकेट में भारत ने दुबई में एशिया कप के ग्रुप ए मुकाबले में हांगकांग के सामने 194 रन का लक्ष्य रखा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 193 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। India and Belgium today reaffirmed their commitment to deepening trade, investment and economic cooperation. Prime Minister Narendra Modi and his Belgian counterpart, Bart De Wever, welcomed the growing diversification of sectors in bilateral trade in the India-Belgium joint statement released after the talks between the two leaders in New Delhi. Both leaders welcomed the launch of the India-Belgium strategic dialogue. India and Belgium have set an ambitious goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. The two sides identified significant potential for cooperation in pharmaceuticals, life sciences, semiconductors, defense manufacturing, critical minerals, renewable energy, ports, logistics, space, and advanced technologies. India and Belgium today exchanged several agreements including letter of intent on defence cooperation and MOUs in the fields of renewable energy for tackling transnational crimes including cybercrime and diplomatic training. In his press statement, Prime Minister Modi emphasised that India's economy has maintained its momentum even in this challenging environment. He said in the last quarter, India recorded a growth of 7.8%. He further said that today, India's growth story is becoming a source of confidence and new opportunities for the world. He highlighted that the scope of bilateral cooperation has expanded beyond traditional sectors to reach strategic areas such as defense and clean energy.
2: हम अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को डबल करने का लक्ष्य साकार कर लेंगे। फ्रेंड, रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। आज हमने दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई है।
1: Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today lauded the small and medium enterprises industries for playing a pivotal role in achieving 7.8% GDP growth in the first quarter of the current fiscal year. While chairing a national workshop on leveraging FTA's outreach program in New Delhi, Mr. Goyal expressed confidence that free trade agreements signed with various countries will pave a steadfast pathway in becoming a major exporter. In Uttar Pradesh, heavy rain and the release of water from barrages have affected 23 districts from flood. Prime Minister Narendra Modi today spoke to District Magistrate Satyendra Kumar of his parliamentary constituency Varanasi over the phone to inquire about the flood situation. Prime Minister inquired about the water levels of rivers in Kashi and the arrangements being made in relief camps. Chief Minister Yogi Adityanath also conducted an aerial survey of flood-affected areas in Farukhabad. He reviewed rescue and relief operations. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today met Ukrainian President Volodymyr Zelensky in Kyiv and discussed on approaches to end the ongoing conflict. He also met his Ukrainian counterpart, Andriy Sybiha. Dr. S. Jaishankar said that India has consistently maintained that this is not an era of war. Dr. Jaishankar also highlighted attacks on commercial shipping during such conflicts and said that it impacts many nations of the global south in a variety of ways, leading to fuel, fertilizer and food shortages. Describing India as a global power, Ukrainian Foreign Minister Andriy Sybiha said his country welcomes Prime Minister Narendra Modi's call to attend the ongoing conflict between Ukraine and Russia. President Draupadi Murmu has extended greetings to the citizens on the eve of Janmashtami. In her message, the president said that the life and teachings of Lord Krishna breathe a new life into cultural and philosophical heritage of India. Meanwhile, the city of Lord Krishna, Mathura, Vrindavan, is decked up for the grand celebration tomorrow on the occasion of Janmashtami. According to our correspondent, preparations are in full swing at Mathura, Vrindavan ahead of Janmashtami, with over 5 lakh devotees expected to visit the city. In badminton, India's ace shuttler Kidambi Srikanth will face Hong Kong's Lee Shuk Yui tomorrow in the men's singles quarterfinals at the China Masters Super 750 in Shenzhen. Srikanth beat Canada's world number 9 Victor Lai 21-18-21-19 in pre-quarterfinals today. In women's cricket, India women defeated Hong Kong by 137 runs. India had set a target of 194 for Hong Kong in their second Group A match in the 2020 Asia Cup at Dubai International Stadium in UAE tonight. And that's the end of this news bulletin.
3: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: Hello and good evening and welcome to Market Mantra. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Amrish Saxena.
1: Namaskar. श्रोताओं मार्केट मंत्र कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं स्टूडियो में आज चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन पुनीत जी कार्यक्रम में आपका स्वागत है
2: धन्यवाद अमरीश जी
1: आइए नजर डालते हैं सबसे पहले मुख्य आर्थिक समाचारों पर
0: थैंक यू अमरीश Benchmark domestic indices extend losing streak. Sensex falls over 400 points. Nifty settles below 23,900. India and Belgium agree to double the bilateral trade in next five years. Also discuss expanding cooperation in areas including semiconductors and critical minerals, among others. And global crude oil prices rise.
1: घरेलू शेयर बाजारों में आज भी गिरावट का रुख रहा सेंसेक्स 400 अंक से अधिक लुढ़का और निफ्टी 23,900 अंक से नीचे बंद हुआ भारत और बेल्जियम अगले 5 वर्षों में आपसी व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए सेमीकंडक्टर दुर्लभ खनिज समेत अनेक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श हुआ और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई

0: And before we begin the program and give you details of the top story, here's a disclaimer for our listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और आज की पहली खबर घरेलू शेयर बाजारों के मुख्य सूचकांक लगातार चौथे दिन आज गिरावट के साथ बंद हुए सेंसेक्स 417 अंक यानी आधे प्रतिशत से अधिक गिरकर 76,153 पर बंद हुआ वहीं निफ्टी 41 अंक यानी 0.2 प्रतिशत की गिरावट के साथ 23,873 पर रहा इससे पहले विदेशी मुद्रा बाजार में मजबूत प्रवाह से सकारात्मक धारणा के चलते बाजार बढ़त के साथ खुले

0: हालांकि कारोबार के दूसरे हिस्से में बाजार शुरुआती बढ़त को कायम नहीं रख सके। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और वैश्विक बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी के कारण निवेशक सतर्क रहे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में प्रमुख सूचकांकों की तुलना में मजबूती देखने को मिली। निफ्टी मिड कैप 100 सूचकांक में 0.4% और निफ्टी स्मॉल कैप 100 सूचकांक में 1.2% की तेजी दर्ज की गई।
1: Benchmark domestic equity indices declined for the fourth consecutive session today. The Sensex shed 417 points or over 0.5% to close at 76,153. The Nifty fell 41 points or 0.2% to settle at 23,873. Earlier, the markets opened on a higher note amid positive sentiment, supported by strong foreign exchange inflows. However, markets failed to hold their initial gains during the second half of the session as elevated crude oil prices and global yields kept investors cautious. On the other hand, the broader market at the National Stock Exchange showed resilience. The Nifty Mid-Cap 100 index rose 0.4%, while the Nifty Small-Cap 100 index jumped 1.2%.
0: सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 23 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। गिरावट वाले प्रमुख शेयरों में टाइटन 2.2%, ट्रेंट 1.9% और आईटीसी 1.6% नीचे रहे। दूसरी ओर एक्सिस बैंक में 0.9%, अडानी पोर्ट्स में 0.8% और एशियन पेंट्स में 0.5% की बढ़त दर्ज की गई।
1: In the sectoral indices on the BSE, 17 out of 28 sectors edged upward. Among the top performers, realty rose 2.4%, housing finance and capital goods gained around 1%, and mid-small private banks added 0.9%. In contrast, focused IT and IT declined 1%. Consumer durables fell 0.6% and auto lost 0.5%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,545 companies advanced, shares of 1,778 companies declined and shares of 223 companies remained unchanged.
0: और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 49 पैसे मजबूत होकर 94.49 रुपए पर बंद हुआ। पुनीत जी, जैसा बाजार का हाल हम देख रहे हैं कि लगातार चौथे दिन भी गिरावट दर्ज की गई है, कौन से आपको ऐसे खास कारण लगते हैं जिसकी वजह से बाजार बार बार कोशिश करता है लेकिन फिर कहीं फिसल जाता है?
2: तो अम्बरीश जी, आज के बाजार की खास बात है कि जो हेडलाइन नंबर्स हैं यानी इंडेक्स को यदि हम देखें तो वहां पर सेंसेक्स में काफी भारी गिरावट है लेकिन निफ्टी में उतनी गिरावट नहीं थी। और यदि हम मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स को देखें तो वहां पर हमने अच्छी बढ़त देखी है। स्मॉल कैप में तो 1% इंडेक्स में बढ़त देखी, तो ये काफी मिला जुला सा बाजार है और ये कहना मुश्किल है कि ये बाजार में इनहेरेंट मंदी थी, जबकि एडवांस डिक्लाइन में भी हम देखते हैं एडवांसिंग स्टॉक्स काफी अच्छे थे। तो हेडलाइन नंबर्स तो हमें बता रहे हैं कि थोड़ी कमजोरी है, लेकिन अगर व्यापक बाजार को देखता हूं, ब्रॉडर मार्केट को देखता हूं तो मुझे उतनी कमजोरी नहीं लगती। दूसरा ये मैं कहूंगा कि जो भारतीय बाजारों के जो इंटरनल फंडामेंटल्स हैं, खासतौर से दो बड़ी बात मैं कहूंगा। पहली बात, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, एफआईआईज के जो डेटा हमारे सामने आना शुरू हुआ है वो बहुत अरसे के बाद पॉजिटिव आना शुरू हुआ है। थोड़ी बाइंग शुरू हुई है, बहुत एग्रेसिव बाइंग नहीं है, बहुत बड़ी बाइंग नहीं है, लेकिन सेलिंग नहीं है सबसे बड़ी बात। और दूसरा है कि मामूली हम देखते हैं बाइंग हो रही है, ये एक अच्छा संकेत है बाजारों के लिए। और दूसरा, जो FCNRB जो डिपॉजिट स्कीम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लाया था, ये सोचकर कि हमें अपने जो मजबूत जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसको और मजबूत करना है, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो चौंकाने वाली है। $127 बिलियन, पहले अनुमान आया था $20 बिलियन का, उसके बाद बहुत ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट आए थे $50 बिलियन के, और उसके सामने जो परफॉर्मेंस आई है, और वो भी जब ये स्कीम एक महीने पहले बंद कर दी गई। एक्चुअली ये स्कीम 30 सितंबर तक चलनी थी लेकिन इतने ज्यादा फॉरेन फ्लोज थे कि RBI को वो स्कीम एक महीने पहले बंद करनी पड़ी, उसके बावजूद $127 बिलियन जो हमारी उम्मीद से बहुत ज्यादा है वो भारत में आए। तो ये कॉन्फिडेंस को दर्शाते हैं और मुझे लगता है कि इस परिपेक्ष में हमको बाजारों की परफॉर्मेंस देखनी चाहिए।
0: पुनीत जी, लेकिन जैसा आपने जिक्र किया कि जल्दी इस स्कीम को बंद किया गया और हम देख रहे हैं रुपए में जो मजबूती आई है, तो क्या कारण था कि अगर ज्यादा इनफ्लो आ जाता तो क्या उससे प्रॉब्लम होने वाली
2: है? देखिए, दो प्रॉब्लम इसकी होती है। पहली प्रॉब्लम यह है कि जो आप जिस स्कीम के तहत ये लेकर आ रहे हैं उसकी थोड़ी कॉस्ट आरबीआई के ऊपर पड़ रही है, क्योंकि आरबीआई ने जो एक्सचेंज का जो रिस्क है, जो प्रीमियम है, वो आरबीआई ने लिया, तो उसकी वजह से थोड़ी कॉस्ट ऑफ फंड्स आरबीआई को उसमें ज्यादा पड़ेगी। थोड़ा आप देखेंगे जो आने वाला समय है का इनफ्लो हुआ है, इस वजह से आज ही के आंकड़े मैं बता रहा हूं आपको कि बैंकिंग सिस्टम में 10,00,000 करोड़ रुपए सरप्लस लिक्विडिटी हो गई है। और जो ओवरनाइट रेट है, जो ओवरनाइट बैंकिंग रेट कहलाता है, ओवरनाइट बैंकिंग रेट रिजर्व बैंक के एक टारगेट रेट होता है कि रिजर्व बैंक एक राइट रेट मेंटेन करना चाहता है, उस रेट के नीचे आ गया है ओवरनाइट रेट। यानी बैंकों को ऊपर ये बर्डन पड़ेगा, उनको जो पैसा सरप्लस बैंक में है वो डिप्लॉय इतनी फास्ट तो देखिए कर नहीं सकते। 10,00,000 करोड़ रुपए आप इमीडिएटली आप उधार नहीं दे सकते, डिप्लॉय नहीं कर सकते, और वो बैंकों की ट्रेजरी में वो पड़ा हुआ है, उसकी कॉस्ट पड़ रही है बैंक के ऊपर। बैंक ने ऊपर रेट पे बोरो किया हुआ है, 6.5% FCNRB में बैंक्स को रेट दिया है उन्होंने, तो इसका असर नेगेटिव पड़ता है कि ज्यादा पैसा भी और जिसको आप यूज नहीं कर पा रहे उसका नुकसान होता है, और यही कारण है कि आरबीआई ने ऐसा कदम उठाया है।
1: पुनीत, यू नो markets, of course, like we said, so today it's the fourth day that the markets, this week at least, that the markets have, you know, ended in red, closed in red. But this is not a one-off. We've been seeing this volatility for a few months now, over a period of time. Now, for those of the investors, for those people who do not have the appetite to invest in a stock market, who are risk averse, at this moment, if they do not want to, you know, venture into the stock market, or if they are already in the stock market, but they are looking at other avenues, what are the other options, especially given the kind of geopolitical situation right now there is, what are the other options they have for investment?
2: Anubhav, it's a very good question you put forth, and it's very relevant in today's thing. Suppose you don't want to invest in markets, you don't want to take that risk. Government over the past few years, particularly last 5-6 years, has introduced many interesting instruments which are very low risk and a higher return than FDs, you know, and bank deposits that usually people go for. For example, government has a lot of infrastructure investment trusts which are called InvITs. They usually give about 8-10%, maybe more in some cases, a 10-12% kind of return annually, and they're absolutely safe. Most of them are very safe. You have real estate investment trusts, REITs, which have been introduced, and also government bonds, which are now listed on the exchanges. If you invest in government bonds, then you have a return of about 7-7.5%, 8%, so which is higher than FD rates. So there are a large number of instruments. Plus, you also have what we typically call hybrid funds, where there's a large proportion of money invested in fixed income instruments and less in equities. So there are plenty of investment options for normal investors, and for senior citizens, of course, there are many schemes which are, so they can invest up to 30 lakh rupees in fixed income. So there are plenty of schemes. I think investors must focus on learning about these schemes, educate themselves, and there are plenty of options where you can get more than bank rate. No, bank rate is 6-7%, but you can get 8-10% with a lot of safety right now.
1: So as you just mentioned, of course, there is the government security bonds where we can, common man can invest. But we are talking about the Indian security bonds. Now, as we were just doing this story, we read that right now we are seeing elevated crude oil prices as well as global yields. So all over the world, the treasury bonds, the yields are going up very high. And for an Indian citizen, if they want to, say, invest in a U.S. treasury bond, although, of course, the yields are not as much as right now the Indian G-Sec yields are, what is the way forward to it? Can we do it as an investor, as an individual? Can we go and invest there?
2: So we cannot directly invest in, let's say, overseas government bonds. But there is a scheme which is called liberalized exchange remittance, through which we can remit money abroad and then invest that money in certain specified options. It can be in real estate, it can be in stocks, it can be in funds, ETFs. So That is one option. So you remit the money abroad and invest in these securities. The other option is that large number of mutual fund houses in India, they offer domestic funds where you put money in rupees and then the fund house is allowed to remit that money abroad and invest in all kinds of instruments. So, and there are multi-asset funds which invest in stocks, they invest in

0: commodities, they invest in bonds, they invest in many instruments. So somebody looking to invest abroad should, I would personally advise, they should look at funds which are available in India, floated by a lot of mutual funds, which invest in securities abroad. So it's a very clean, easy way of investing in assets abroad.
1: But, you know, because we are specifically talking about the US bonds or some would say that for a country which is right now has a $40 trillion, you know, dollars of debt, does it make sense to, you know, through whichever means to go and invest there for those who can afford to?
0: So, Anubha, conventional wisdom would say that, but the market doesn't seem to believe it. Market continues to invest heavily in U.S. government bonds. In fact, countries like Japan have invested huge, more than $1 trillion of investments is coming from Japan. They're coming from a large number of other countries. So, I think U.S. economy continues to be quite robust. So, while if I look at the papers, I look at the academics of it, then it may daunt me. But I think markets have put a lot of faith in U.S. markets, U.S. economy so far.
1: Right. Let's move on to our next story. India's services sector strengthened in August, supported by resilient export demand, while employment reached a 15-month high. The seasonally adjusted HSBC India Services Purchasing Managers Index, or PMI Business Activity Index, rose to 54.1 in August, up from 53.3 in July. Despite the acceleration, the overall pace of expansion remained the second weakest since March 2022 and stayed marginally below the long-run average of 54.5. The report noted that new business gained momentum in August due to stronger customer demand and marketing initiatives. However, the growth rate in sales was the second lowest in nearly 4.5 years, impacted by challenging market conditions and softer client appetite in selected services. According to the latest data compiled by S&P Global, input cost inflation edged up slightly last month due to higher spending on digital platforms, electricity, inputs, labor, marketing and regulatory requirements. Meanwhile, the HSBC India Composite PMI Output Index stood at 54.3 in August, unchanged from July, as faster growth in services offset a slowdown in manufacturing. Puneet, a lot of numbers we are seeing here, but what is, the most important numbers, of course, is that the PMI Business Activity Index has risen to 54.3 in August from 53.3 in July. But as also I read in the, you know, next line, that it is still the second weakest since March 2022. How do you look at it?
0: So, Anubha, if you really look at it, so you can really look at it from different perspectives.
1: Okay.
0: One, of course, is the fact that the absolute number, if you look at the 53.3 below long-term average, means that there is some inherent underperformance vis-a-vis business activity.
1: Okay.
0: But when I look at it in context of the challenges that the economy has, so this was a very difficult period for Indian economy, where you had a war in West Asia, you have war in Europe, commodity prices have gone through the roof, inflationary pressures are there. The story itself mentions that the input cost pressures have really gone up. When I look at all this, it gives me a lot of satisfaction that our business activity continues to be robust.
1: Right.
0: It continues to expand.
1: Yeah.
0: Many other countries have seen huge challenges. And here I might mention the fact that China is facing a crisis in manufacturing.
1: Okay.
0: There is a lot of talk right now that China has to come out with a stimulus to boost its... And this is despite China having the highest possible exports, highest numbers of exports in the last many, many years. That means China's domestic economy is not doing well at all, because export numbers are very, very large. So clearly, I think, given these challenges and the context of the geopolitical difficulties we have, I think these numbers are pretty good. And the moment the inflation pressures go down, and I think the war sooner or later comes to an end, I think we'll do well.
1: Right.
2: और चलते हैं अगली खबर की ओर. भारत और बेल्जियम के बीच आज कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए. इनमें रक्षा सहयोग पर आशय पत्र तथा नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध सहित अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन शामिल है. इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा भविष्य और भरोसेमंद सप्लाई चेन दोनों देशों की साझा प्राथमिकताएं हैं. उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में आज हुए समझौता ज्ञापन से आपसी सहयोग की निरंतरता को नई गति मिलेगी.
3: क्रिटिकल मिनरल्स में हमने प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है. सेमीकंडक्टर्स में बेल्जियम की एक्सपर्टाइज और भारत का स्केल एक दूसरे के पूरक है. इस दिशा में हम बेल्जियम के आईमेक इंस्टीट्यूट को भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से जोड़ने के लिए मिलकर काम करेंगे. बेल्जियम की कंपनीज के लिए हमने भारत में इन्वेस्टमेंट फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म का गठन किया है. हमने इंडिया बेल्जियम बिजनेस फोरम को एक रेगुलर मैकेनिज्म बनाने का निर्णय लिया है. हम दोनों देशों की फाइनेंशियल फिनटेक और रेगुलेटरी संस्थाओं के बीच तालमेल बढ़ाएंगे और इन सभी पहलों से हम अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को डबल करने का लक्ष्य साकार कर लेंगे.
2: और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर ने अपने वक्तव्य में भारत को सबसे बड़े लोकतंत्र और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश और एक महत्वपूर्ण सहयोगी बताया. पुनीत जी, बहुत ही महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं भारत और बेल्जियम के बीच में, और बेल्जियम दुनिया की 24वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. और अगर इसको हम इस नजरिए से देखें कि भारत और ईयू के बीच मुक्त व्यापार समझौता हो चुका है, तो इस इन समझौते के क्या मायने?
0: देखिए, भारत ने, जैसे आपने कहा कि भारत अपना जो ट्रेड बास्केट है वो एक्सपैंड कर रहा है बहुत तेजी से. तो एक तरफ हम देखते हैं कि एफटीए हम यूके से साइन करते हैं, ईयू से साइन करते हैं, अफ्रीका में साइन कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से साइन करते हैं. तो बेल्जियम भी एक बहुत महत्वपूर्ण कंट्री है, पर्टिकुलरली रिन्यूएबल एनर्जी में बेल्जियम का बहुत बड़ा योगदान है. और जैसे हम जानते हैं कि आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत बड़ा रोल होगा भारत की प्रगति में, तो मुझे लगता है ये जो एक समझौता है उस लक्ष्य से वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा.
2: और एक और अच्छी खबर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की. उन्होंने दिल्ली में एक कार्यक्रम में विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने की दिशा में मजबूत आधार देंगे. उन्होंने दुनिया भर में भारत के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मुक्त व्यापार समझौतों के अधिकतम उपयोग की दिशा में देशव्यापी और समग्र प्रयास करने का आह्वान किया. तो पुनीत जी, जैसा आप अभी जिक्र ही कर रहे थे कि जो मुक्त व्यापार समझौते हैं इनके माध्यम से भारत अपने व्यापार को काफी विस्तार दे रहा है, और जो अभी हमारी जीडीपी की फिगर्स आई है उसमें छोटे और मध्यम उद्योगों की भूमिका पर प्रकाश डाला पीयूष गोयल जी ने, आप इसमें और क्या जोड़ना चाहें?
0: देखिए, जो भारत को अपनी जगह बनानी है अगर इंटरनेशनल ट्रेड में, हमारा अभी भी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है बहुत कम है, करीब करीब 2% से भी कम हमारा जो शेयर है वर्ल्ड ट्रेड में, और वो हमें 5% का हमारा लक्ष्य है. प्रधानमंत्री ने कई बार ये बात कही है, और मुझे लगता है जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और एक जो कॉम्प्लेसेंसी थी, एक हम बिल्कुल बैठे थे आराम से कि देखिए कोई बात नहीं, ट्रेड हमारा एक धरे पे चला आ रहा था पिछले 50-60-70 वर्षों से, वो एक शेकअप हुआ है. और इसलिए ये जो बास्केट है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट खास तौर से मैं कहूंगा वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. और सच बताऊं आपको, इसका असर आपको 5 वर्ष के बाद मालूम होगा. ये अभी ये एग्रीमेंट हम कर रहे हैं, इसका असर अगले 6 महीने में या 1 साल में आप नहीं देखेंगे. जो नंबर्स हैं उसमें 2-3-4 वर्ष लगेंगे, फिर आप इसका असर देखिएगा.
2: और अभी तो जैसा गोयल जी ने कहा है कि कनाडा, मेक्सिको, चिली और तमाम और देशों के साथ भी भारत इस तरह के समझौते करने वाला है.
0: 50 ऐसे FTAs इन द वर्क्स हैं भारत के लिए, और एक बहुत बड़ा एक नंबर है. देखिए, भारत जैसी अर्थव्यवस्था ही अफोर्ड कर सकती है, छोटे देश तो कोई ऐसा एग्रीमेंट कर ही नहीं सकते. तो आज हमारी अर्थव्यवस्था इस पोजीशन में है कि हम ऐसे एग्रीमेंट्स साइन कर सकते हैं, ये भी एक उपलब्धि है.
1: लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी. रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी टुडे एम्फसाइज दैट इंडिया हैज द पोटेंशियल टू बिकम द वर्ल्ड्स नंबर वन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ड्रिवन बाय इनोवेशन, quality and competitive pricing. Addressing the 66th annual convention of Society of Indian Automobile Manufacturers, SIAM, in New Delhi, Mr. Gadkari said the sector, currently valued at over 22.75 lakh crore rupees, contributes nearly 15% of the country's GST collections and supports around 4 crore direct and indirect jobs. He highlighted that India's automobile exports grew by 24% during 25-26. The union minister also expressed confidence that the industry's contribution to the country's economic growth will continue to expand. Puneet, you know, like I just read that the auto sector is really very, very important for us. It contributes to our GDP in a very big way. The exports have grown by 24% in 25-26. What is the way forward? What are the areas where we need to work in this sector?
0: So, Anubhav, like you said, I think if

0: country, any economy, automotive sector is central to growth, because it is not only the direct taxes or the employment that it provides, the indirect mobility, the indirect momentum it provides to the economy. So unless the transportation sector grows, you can't have an economy which is growing. So clearly it is that important. However, in India, this industry is transforming because of the way the fuel sector or the energy sector is transforming. So now you have a whole spectrum of vehicles, from electric vehicles to hybrids to ethanol driven to mixed fuel. I think that is the way forward. The industry has to adapt to these new technologies in terms of fuel, in terms of mobility, and that is how we can grow. Also, if you look at exports, if you look at new technologies, I think innovation in automotive sector will be the way forward for
1: us. So R&D is one area where we need to really work
0: for. Absolutely, and I know personally, I know a lot of people who are working in this area, and innovation and technology and research is the heart of this. If we don't do it, we will lag behind for sure. Right.
2: और चलते हैं एशिया के बाजारों का हाल भी जान लेते हैं. आज एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कोस्पी लगभग 0.3% बढ़ा, जबकि जापान का निकेई 225 0.2% गिरा. पुनीत जी, आप क्या कहेंगे आज के बाजारों की परफॉर्मेंस के बारे में?
0: देखिए, एशिया यूरोपीय बाजारों में हमने देखा है कि काफी वॉलेटिलिटी बहुत रही है पीछे, खासतौर से सेमीकंडक्टर सेक्टर से रिलेटेड, क्योंकि इस स्टॉक्स की बहुत ज्यादा वेटेज है कोरिया में, जापान में, ताइवान में, तो वहां पर काफी वॉलेटाइल वो रहा है. और अमेरिका में भी थोड़ा टेक्नोलॉजी सेक्टर के शेयरों में गिरावट हमने देखी है पिछले दिनों. तो ये एक रिस्क फैक्टर रहा है इकोनॉमीज के लिए. पर मुझे लगता है कि गिवन द करंट पॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन, ये वॉलेटिलिटी एक पार्ट ऑफ द स्टोरी है. आप देखेंगे कभी ये बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, कभी गिर जाते हैं, और इसके मुकाबले भारत तो काफी स्टेबल है.
1: Let's move on to commodities. Global crude oil prices erased earlier losses and hovered near 6-week highs after fresh U.S. strikes on Iran and renewed Israeli threats against Tehran heightened concerns about supply disruptions. Brent crude was trading 1.6% up at $97.17 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was also trading 2.2% higher at $93 per barrel when reports last came in.
2: और सराफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1.8% बढ़कर 1,53,941 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, और चांदी 1.8% बढ़कर 2,32,533 रुपए प्रति किलोग्राम थी. पुनीत जी, आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? एक बार फिर से हमें तेजी दिखाई दे रही है सोने और चांदी में आज.
0: अमरीश जी, देखिए, जैसा शेयर मार्केट में तेजी मंदी चल रही है, काफी वॉलेटिलिटी चल रही है, ऐसे ही करेंसी मार्केट्स में, यील्ड में हम देख रहे हैं, वैसा ही माहौल कुछ सोने चांदी के बाजारों में लग रहा है. काफी वॉलेटाइल है. परसों बाजार काफी जोर के गिरे थे, फिर वहां पर फिर बढ़त आई. ये भी न्यूज ड्रिवन है, सेंटिमेंट ड्रिवन हो रहा है. तो मुझे लगता है कि अभी ये माहौल रहेगा. तो पूरा एक वॉलेटिलिटी का माहौल या इंस्टेबिलिटी का माहौल मार्केट्स के अंदर और इकोनॉमी में भी चल रहा है, और उसी का ही रिफ्लेक्शन है. बट देखिए, नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा तेजी है, बहुत मंदी है. वो 1-2% के रेंज में ट्रेड कर रहा है, ऐसा ही रहेगा शायद.
1: अ वेरी क्विक कमेंट फ्रॉम यू पुनीत. यू नो द ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस, दे वी कैन लाइक वी सॉ दैट every day it's a volatility, but given the fact that we were earlier discussing our foreign exchange reserves are very comfortable, so it's a good news for us given the way the oil prices are moving.
0: So Anubha, oil prices of course are a matter of concern, and it really hurts the Indian economy, no doubt about it. We wish it were lower. However, it is very political right now, right. And I don't think this is going to sustain. So this may be a short-term challenge for us, but longer-term, I think we'll be in a happy place.
2: पुनीत जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद.
0: धन्यवाद अमरीश जी.
1: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices extend losing streak. Sensex falls over 400 points. Nifty settles below 23,900. India and Belgium agree to double the bilateral trade in next 5 years. Also discuss expanding cooperation in areas including semiconductors and critical minerals, among others. And global crude oil prices rise. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है। अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख दा वेवर से कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद को खत्म करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश बताया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बेल्जियम की रक्षा कंपनियों से भारत की विनिर्माण क्षमता के साथ अपनी तकनीकी विशेषज्ञता को जोड़कर संयुक्त रूप से रक्षा

0: पुनर्विकसित करने और बनाने का आग्रह किया। नई दिल्ली में भारत बेल्जियम रक्षा मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोलमेज बैठक में उन्होंने साइबर सुरक्षा, एआई आधारित ड्रोन, पानी के भीतर इस्तेमाल होने वाले वाहनों और उन्नत हथियार प्रणालियों जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि यह युद्ध का युग नहीं है और किसी भी समस्या का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं निकल सकता। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किर्गिस्तान के बिश्केक में दिए गए बयान को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करने का समय है। डॉक्टर जयशंकर ने यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। बैठक में समुद्री सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों तथा मानवीय सहायता और आपदा राहत के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने में मदद करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पात्र संस्थानों से विश्वास 2026 योजना के तहत लंबे समय से लंबित ईपीएफ बकाया विवादों को कम दर पर निपटाने की अपील की है। यह एकमुश्त निपटान योजना है जिसमें नियोक्ता कम जुर्माना देकर पुराने विवादों का समाधान कर सकते हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि यह योजना 28 दिसंबर 2026 तक खुली रहेगी और इसकी अंतिम तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। सरकारी ई मार्केट प्लेस और टेक्सटाइल कमेटी ने पुनर्चक्रित और दोबारा इस्तेमाल किए गए कपड़ा उत्पादों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल के तहत कपड़ा कचरे, कतरनों और पुराने कपड़ों से बने उत्पादों को सरकारी ई मार्केट प्लेस के जरिए सरकारी खरीदारों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स स्मार्ट स्पोर्ट्स स्पेशलिटी अस्पताल के नए भवन का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि नए भवन से सेवाओं का विस्तार होगा और अधिक लोगों को इसका लाभ मिलेगा। महिला क्रिकेट में भारत ने दुबई में हांगकांग को 137 रन से हराकर टी20 एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 193 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 64 गेंदों में 124 रन बनाए। भारत ने अपने पहले मैच में थाईलैंड को 94 रन से हराया था। देशभर में आज हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। India and Belgium have reaffirmed their commitment to deepening trade, investment and economic cooperation. Prime Minister Narendra Modi and his Belgium counterpart, Bart De Wever, welcomed the growing diversification of sectors in bilateral trade in the India-Belgium joint statement released after the talks between the two leaders in New Delhi. Both leaders welcomed the launch of the India-Belgium strategic dialogue. India and Belgium have set an ambitious goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. The two sides identified significant potential for cooperation in pharmaceuticals, life sciences, semiconductors, defense manufacturing, critical minerals, renewable energy, ports, logistics, space and advanced technologies. India and Belgium exchanged several agreements, including letter of intent on defence cooperation and MOUs in the fields of renewable energy for tackling transnational crimes, including cybercrime and diplomatic training. In his press statement yesterday, Prime Minister Modi emphasised that India's economy has maintained its momentum even in this challenging environment. He said in the last quarter, India recorded a growth of 7.8%. He further said that today, India's growth story is becoming a source of confidence and new opportunities for the world. He highlighted that the scope of bilateral cooperation has expanded beyond traditional sectors to reach strategic areas such as defence,

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। निशिगंधा में पहला गीत फिल्म अमर प्रेम से, आवाज है लता मंगेशकर की, तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं निशिगंधा और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयति। कहते हैं कि आसमान में टिमटिमाते जो तारे होते हैं उनकी भी अपनी एक भाषा होती है और वो भाषा ऐसी होती है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे आसमान में टिमटिमाते तारों को तो आपको ऐसा लगेगा कि वो तारे कोई संदेश लिख रहे हैं। दूर कहीं बादल भी अपनी धीमी कहानी कहता रहता है और तारे लिखते रहते हैं। हवा के स्पर्श में आज कुछ नया सा एक एहसास है और संगीत के हर सुर में जैसे दिल के पास आने की बात है। रात की ये घड़ी बता रही है कि ये जो पल है ये पल अपने आप में कितना खास है। ये जो गीत आप सुन रहे हैं हर अगला गीत ये हमें बताकर जाता है कि आने वाला हर एक पल बहुत खूबसूरत होगा। और अगर हम अपनी दुनिया में कहीं किसी बात को लेकर बहुत चिंतित हैं, परेशान हैं, बहुत गुम हैं, तो ये वो पहर है जो हमें खुद से मिलने का मौका देती है। तो भूल जाइए उन सारी बातों को कुछ देर के लिए और आइए सुनते हैं एक और गीत, सुंदर सा आप सभी के लिए। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अगला गीत फिल्म का नाम है राम तेरी गंगा मैली, आवाज है लता मंगेशकर की।

जब दिन अपने सारे रंग समेट कर दूर चला जाता है, रात का आकाश नई तस्वीर बनाता है, कहीं नींद पलकों पर धीरे धीरे उतरती है, कहीं कोई धुन मन के किसी कोने में ठहरती है, यही वो समय है, ये रात का ये पहर, जब यादें बिना बुलाए चली आती हैं और कुछ पुरानी धुनें चेहरे पर मुस्कान लेकर आती हैं। तो आइए इस पहर को संगीत की नरम रोशनी में सजाएं और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत। फिल्म का नाम है प्रेम गीत, आवाज है अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती।

दिन का उजाला जैसे जैसे घटते घटते या यूं कहें कि ढलते ढलते रात की ड्योढ़ी पर दस्तक देता है, वैसे ही रात एक अलग कहानी लिखना शुरू कर देती है। रात की स्याही में डूबकर शहर भी अपना नाम लिखना शुरू कर देता है। दिन भर का किस्सा धीरे धीरे मिटने लग जाता है। दुकानों के जो शटर होते हैं वो गिरने लग जाते हैं। सुनसान से रस्ते और दूर जाती गाड़ी के धुंधले से उजाले। रात के इस पहर की भी अपनी एक तहजीब होती है। हर आवाज यहां कुछ धीमी पर करीब महसूस होती है। और इस नर्म लय में जब हम अपने मन की आवाज को सुनते हैं तो हम खुद को भी खुद के थोड़ा और करीब पाते हैं। ऐसी ही कुछ और बातें करेंगे। फिलहाल सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत। फिल्म का नाम है दो दिल, आवाज है आरती मुखर्जी और मोहम्मद रफी की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

और अब वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1 बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। छोड़े जाते हैं आपके एक प्यारे से गीत के साथ। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर से कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछले तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद को खत्म करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश बताया। वित्त मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यह युद्ध का युग नहीं है और किसी भी समस्या का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं निकल सकता। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबेहा के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किर्गिस्तान के बिश्केक में दिए बयान को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करने का समय है। डॉ जयशंकर ने यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में और छोटे मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। इसके अलावा श्री गोयल ने नई दिल्ली में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स की बोर्ड बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और पेशेवर संस्थाएं कारोबार, नागरिकों और सरकार के बीच विश्वास कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत, समावेशी और टिकाऊ बनाने के लिए तकनीक, एआई और नवाचार को अपनाने पर जोर दिया। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा है कि हरित नौवहन की दिशा में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल होगा। श्री सोनोवाल ने कल गुरुग्राम के ऊर्जा और संसाधन संस्थान के ग्वाल पहाड़ी परिसर का दौरा किया और हरित नौवहन से जुड़ी विभिन्न पहलों की समीक्षा की। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने त्रिपुरा से 18 मीट्रिक टन जैविक चावल की खेप को निर्यात के लिए रवाना किया है। चावल की 4 किस्मों की यह खेप ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड्स भेजी जाएंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इससे त्रिपुरा के किसानों को नए अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिलेंगे और उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कल नई दिल्ली में राजघाट समाधि स्थित समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राजघाट स्मारक के रखरखाव, साफ सफाई और प्रबंधन की समीक्षा की गई। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1252 हो गई है। वहीं 4216 लोग अब भी लापता हैं। भारत ने कल नेपाल के लिए 2 और विमानों के जरिए 21.5 टन राहत सामग्री की नई खेप भेजी। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने बताया है कि गृह मंत्रालय ने नेपाल में लापता लोगों की पहचान के लिए डीएनए जांच की सुविधा उपलब्ध कराएगा। महिला क्रिकेट में भारत ने हांगकांग को 137 रन से हराकर टी20 एशिया कप के फाइनल सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 193 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 16 ओवर और 2 गेंद में 56 रन पर ऑल आउट हो गई। देशभर में आज जन्माष्टमी के अवसर पर उत्सव का माहौल है। मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Renu Kataria. India and Belgium have reaffirmed their commitment to deepening trade, investment and economic cooperation. Prime Minister Narendra Modi and his Belgium counterpart Bart De Wever welcomed the growing diversification of sectors in bilateral trade in the India-Belgium joint statement released after the talks between the two leaders in New Delhi. Both leaders welcomed the launch of the India-Belgium strategic dialogue. India and Belgium have set an ambitious goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. The two sides identified significant potential for cooperation in pharmaceuticals, life sciences, semiconductors, defense manufacturing, critical minerals, renewable energy, ports, logistics, space and advanced technologies. India and Belgium exchanged several agreements, including letter of intent on defense cooperation and MOUs in the fields of renewable energy for tackling transnational crimes, including cybercrime and diplomatic training. In his press statement yesterday, Prime Minister Modi emphasized that India's economy has maintained its momentum even in this challenging environment. He said in the last quarter, India recorded a growth of 7.8%. He further said that today, India's growth story is becoming a source of confidence and new opportunities for the world. Home Affairs Ministry will make available the services of Central Forensic Science Laboratories, State Forensic Science Laboratories and National Forensic Sciences University Laboratories in India for DNA profiling of first-degree biological relatives of persons who remain missing following the flash flood in Nepal. External Affairs Ministry said in a statement that first-degree biological relatives residing in India, fathers, mother, son, daughter or sibling may have their biological samples collected and DNA profiles prepared at certain facilities. As advised by the Nepal police, autosomal STR DNA profiling may be undertaken for the purpose of identification subject to the technical requirements communicated by the Nepali authorities. The helpline number in this regard is +977 9841 616095. The DNA profiles, along with the preliminary information required by the Nepali authorities, may be sent by email to dnacodis@nepalpolice.gov.np for comparison with DNA profiles obtained from unidentified mortal remains. For facilitation and coordination by the Embassy of India, Kathmandu, a copy of the DNA profile may also be sent to eoikathmanduflood support@gmail.com. Government e-marketplace, GEM and Textiles Committee have signed Memorandum of Understanding to boost procurement of recycled and upcycled textiles. The initiative will promote recycled and upcycled products made from pre- and post-consumer textile waste, scrap and second-hand clothes through public procurement, creating new market opportunities for enterprises in the circular textile economy. Ministry of Commerce and Industry said that MOU will create a waste-to-value-to-market ecosystem, enabling textile waste, scrap and second-hand clothes to be transformed into quality value-added products and made available to government buyers through GEM. India Meteorological Department, IMD, has issued an orange warning predicted heavy to very heavy rainfall over Madhya Pradesh today. Heavy rainfall is also expected over Haryana, Chandigarh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Western Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand and parts of northeastern parts today. IMD forecast generally cloudy sky with one or two spells of light rainfall at many places of Delhi today. President Draupadi Murmu has extended greetings to the citizens on the eve of Janmashtami. In her message, the president said that the life and teachings of Lord Krishna breathe a new life into cultural and philosophical heritage of India. Meanwhile, the city of Lord Krishna, Mathura, Vrindavan is decked up for the grand celebration today on the occasion of Janmashtami. And in women's cricket, India stormed into the semi-final of 2020 Asia Cup, defeating Hong Kong by 137 runs in their second Group A match at Dubai International Stadium in UAE. That is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और गीत सुहाने में पहला गीत आवाज है सुमन कल्याणपुर और मुकेश की। फिल्म का नाम है मेरी सूरत तेरी आंखें।

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने, और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। फिर एक सांझ हमारे हिस्से में आकर धीरे धीरे विदा हो गई। आंखों के भीतर न जाने कितनी ऋतुएं भीगती रही, किंतु अधरों ने बस इतना कहा, फिर मिलेंगे। कितना छोटा सा वाक्य था वह, पर उसके भीतर कितनी दूरियों के पार जाने की एक पूरी शक्ति छिपी थी। एक राह ने मुझे मेरी दिशा दे दी, एक राह ने मुझे मेरी दिशा दे दी, दूसरी ने उसे बुला लिया। नगर अलग थे, आकाश एक था, और उस एक आकाश के नीचे हमने अपने हिस्से की प्रतीक्षा बांट ली, और उस एक आकाश के नीचे हमने अपने हिस्से की प्रतीक्षा बांट ली।

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने और आपके साथ हूं मैं जयती। किसने छेड़ा मेरे अंतर के अनलिखे अक्षरों को, किसने छेड़ा मेरे अंतर के अनलिखे अक्षरों को कि बिना किसी निमंत्रण के भावों की धरती पर मधुर लहरियां उतरने लगी। मैं तो अपने ही दिनों की धूल समेटे सामान्य पथ पर चल रही थी। मैं तो अपने ही दिनों की धूल समेटे सामान्य पथ पर चल रही थी, किंतु किसी अदृश्य स्पर्श ने सांसों के निर्जन आंगन में एक ऐसी रचना लिख दी जिसका अर्थ केवल हृदय पढ़ सकता है। न यह आकर्षण था, न किसी अभिलाषा का विस्तार, यह तो मानो बहुत दूर छूट गई अपनी ही किसी पहचान का अचानक लौट आना था। मेरे भीतर कितने ही स्वर वर्षों से बिना उच्चारण के ठहरे थे, वे किसी वाद्य की प्रतीक्षा में नहीं थे, एक सच्ची अनुभूति के प्रतीक्षा में थे। ज्यों ही तुम्हारे स्मरण की हल्की रेखा मन की धरती पर उतरी, ज्यों ही तुम्हारे स्मरण की हल्की रेखा मन की धरती पर उतरी, हर निष्प्रभ कोना अपने आप अर्थ से भर गया, अपने आप अर्थ से भर गया। किसने छेड़ा मेरे अंतर के अनलिखे अक्षरों को कि बिना किसी निमंत्रण के भावों की धरती पर मधुर लहरियां उतरने लगी।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। अगला गीत फिल्म का नाम है मिस मेरी, आवाज है लता मंगेशकर।

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने, और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। आपने कभी झमाझम बरसती बारिश को ध्यान से सुना है? बारिश जब होती है ना, तो बिल्कुल वो लाइन जो है सच साबित हो जाती है कि फिराक की बारिश मलाल का मौसम, फिराक की बारिश मलाल का मौसम, हमारे शहर में उतरा कमाल का मौसम। जनाब, बारिश हर शहर को कमाल कर देती है। बरसते बारिश में कभी अपने शहर को ध्यान से देखिएगा, रात की आवाज बदल जाती है, छज्जे से गिरती धार कोई पुराना सुर छेड़ देती है, भीगी सड़क पर रोशनी की परछाइयां बहती हैं, और बंद कमरों में तो न जाने कितनी स्मृतियां सांस लेने लग जाती हैं। ऐसे मौसम में जब कोई रात में चाय का एक गरम कप पकड़कर साथ बैठ जाए, कोई अपना पसंदीदा गीत सुनने लग जाए, किसी को घर की याद सताने लग जाए, और किसी को अपने पुराने शहर लौट जाने का मन करने लग जाए, तो कहते हैं कि दिल उस वक्त अपनी सच्ची कहानी सुना रहा होता है, यानी आपसे खुद की बात कह रहा होता है। बारिश का मौसम शायद इसलिए भी प्यारा है कि यह बिना कुछ कहे बहुत कुछ याद दिला देता है। बूंदों की धुन जो है वो हमारे मन की धुन के साथ कदम मिलाने लग जाती है। बातें और भी हैं बहुत सारी, फिलहाल इस रात को थोड़ा और खूबसूरत बनाते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। फिल्म का नाम है कामचोर, आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। आइए सुनते हैं ये गीत, फिर करेंगे और बहुत सारी बातें। सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

वक्ता चला एक बार फिर से आपको याद दिलाने का कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 2 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। अभी छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्क द वेवर से कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: भारत और बेल्जियम के बीच कल कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इनमें रक्षा सहयोग पर, आशय पत्र तथा नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध सहित अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन शामिल है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यह युद्ध का युग नहीं है और किसी भी समस्या का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं निकल सकता। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किर्गिस्तान के बिश्केक में दिए बयान को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करने का समय है। वहीं यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। इसके अलावा श्री गोयल ने नई दिल्ली में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स की बोर्ड बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और पेशेवर संस्थाएं कारोबार, नागरिकों और सरकार के बीच विश्वास कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत, समावेशी और टिकाऊ बनाने के लिए तकनीक, एआई और नवाचार को अपनाने पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने त्रिपुरा से 18 मीट्रिक टन जैविक चावल की खेप को निर्यात के लिए रवाना किया है। चावल की चार किस्मों की यह खेप ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड्स के लिए है। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। नेपाल तिब्बत में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,252 हो गई है। वहीं 4,216 लोग अब भी लापता हैं। भारत ने कल नेपाल के लिए दो और विमानों के जरिए 21.5 टन राहत सामग्री की नई खेप भेजी। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने बताया है कि गृह मंत्रालय नेपाल में लापता लोगों की पहचान के लिए डीएनए जांच की सुविधा उपलब्ध कराएगा। देशभर में आज जन्माष्टमी के अवसर पर उत्सव का माहौल है। मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने जन्माष्टमी के आयोजनों को लेकर यातायात परामर्श जारी किया है। रोहिणी के इस्कॉन मंदिर, रामलीला ग्राउंड और जापानी पार्क में आज सुबह 7 बजे से रात 1 बजे तक यातायात बाधित रहेगा। महिला क्रिकेट में भारत ने हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 193 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 16 ओवर और 2 गेंद में 56 रन पर ऑल आउट हो गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. India and Belgium have reaffirmed their commitment to deepening trade, investment and economic cooperation. Prime Minister Narendra Modi and his Belgium counterpart Bart De Wever welcomed the growing diversification of sectors in bilateral trade in the India-Belgium joint statement released after the talks between the two leaders in New Delhi. Both leaders welcomed the launch of the India-Belgium strategic dialogue. India and Belgium have set an ambitious goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. India and Belgium exchanged several agreements, including letter of intent on defence cooperation and MOUs in the fields of renewable energy for tackling transnational crimes, including cybercrime and diplomatic training. The Supreme Court of India will host the BRICS Chief Justices Forum in New Delhi from today. The forum will bring together Chief Justices, Presidents of Supreme Courts and senior judicial leaders from BRICS member states and partner countries. The forum will provide a platform for dialogue among the participating judiciaries and for exchange of views on contemporary issues relating to justice delivery, international dispute resolution, technology and sustainable development. Chief Justice of India Suryakant will hold a series of bilateral meetings with heads of judicial delegations on the opening day. He will meet judicial leaders from Russia, China, Egypt, Indonesia, the UAE, Belarus, Kazakhstan, South Africa, Iran, and Uzbekistan. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal yesterday called upon the automotive industry to deepen localization, expand exports, and prepare to serve global markets. Addressing the 66th Society of Indian Automobile Manufacturers, SIAM, annual convention in New Delhi, he urged the industry to seize the opportunities emerging from India's expanding trade partnerships, growing domestic market and global shifts in manufacturing. He said that the automotive sector would be one of the most important drivers of India's growth story in the years to come. He stated the industry had demonstrated strong growth and that rising incomes and aspirations offered considerable scope for this growth to continue. Government e-marketplace, GEM and Textiles Committee have signed Memorandum of Understanding to boost procurement of recycled and upcycled textiles. The initiative will promote recycled and upcycled products made from pre- and post-consumer textile waste, scrap and second-hand clothes through public procurement, creating new market opportunities for enterprises in the circular textile economy. Ministry of Commerce and Industry said that MOU will create a waste-to-value-to-market ecosystem, enabling textile waste, scrap and second-hand clothes.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

ही पड़ा ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है ये माना मेरी जान।

आप सुन रहे हैं रात सुरमई। कभी आपने गौर किया है, एक गीत जब खत्म हो जाती है तो उस गीत के खत्म होने के बाद भी उसकी जो धुन है बहुत देर तक भीतर चलती रहती है। कुछ गीत सुनाई नहीं देते, याद रह जाते हैं। उनसे जुड़े चेहरे, रास्ते, मौसम अचानक फिर से आंखों के सामने आने लग जाते हैं। शायद संगीत की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो बीते हुए पल को फिर से जीने का एहसास देता है। और ये जो गीत होते हैं ना, जो हम सुनते हैं, अपने कुछ मनपसंद गीतों की लिस्ट बनाकर रखते हैं, ये गीत सिर्फ गीत नहीं होते, वे हमारे मन के, यादों के दरवाजे भी बहुत आहिस्ता आहिस्ता खोलने लग जाते हैं। कोई भी गीत हो, उसकी धुन आपकी हो सकती है, हमारी हो सकती है। और हमारे और आपके धुन के होने का मतलब कि वो गीत जो हमें बहुत पीछे ले जाए, यादों के पुराने मौसम को फिर से दोहराने का मौका दे, ऐसी धुन आपकी भी हो सकती है और हमारी भी हो सकती है। किसी के मुस्कुराहट का कारण हो सकती है, किसी की याद का कारण बन सकती है। तो सुनते हैं एक और गीत और फिर करेंगे ऐसी ही कुछ और बातें। और अब जो गीत हम आपको सुनवाएंगे, लता मंगेशकर की आवाज है और फिल्म का नाम है रेशमा और सेरा।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयदी। और आज सुरमई में अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है दीवाना, आवाज है कुमार शानू और अलका याग्निक की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं रात सुरमई। रात से पूछिए तो वो दिन का हिसाब नहीं मांगती, बस अगली सुबह तक का थोड़ा समय देती है। जो अच्छा रहा उसे दिल में रखिए, और जो बिगड़ गया उसे बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। कुछ फैसले सुबह की रोशनी में बेहतर समझ आते हैं, इसलिए हर सवाल का जवाब इसी वक्त हो जरूरी नहीं। आज बस अपने मन को थोड़ा आराम दीजिए, कुछ प्यारे गीत सुनिए, आने वाले कल के लिए थोड़ी सी जगह बचा कर रखिए, क्योंकि जिंदगी हर सुबह एक नया पन्ना लेकर आती है, और शायद अगली सुबह की कहानी आज की रात से ही शुरू हो रही हो। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है आशा।

रात गहरी है तो क्या दिल में उजाला रखिए, रात गहरी है तो क्या दिल में उजाला रखिए, नींद आए न आए कोई ख्वाब निराला रखिए, नींद आए न आए कोई ख्वाब निराला रखिए। अगला गीत फिल्म लगान से, आवाज है उदित नारायण, आशा भोसले और वैशाली की।

रात कहती है कि इस अंधेरी सी शब में रंग भरते जाइए, इस अंधेरी सी शब में रंग भरते जाइए, कोई भूला हुआ नगमा सा बिखेरते जाइए, कोई भूला हुआ नगमा सा बिखरते जाइए। वक्त आ चला है कि आपको एक बार फिर याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और समाचारों के बाद अर्चित होंगे आपके साथ। फिलहाल आपको छोड़े जाते हैं फिर मिलने के वादे के साथ और एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है संजोग, आवाज है लता मंगेशकर की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाक द वेवर से कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: भारत और बेल्जियम के बीच कल कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इनमें रक्षा सहयोग पर आशय पत्र तथा नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन शामिल है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यह युद्ध का युग नहीं है और किसी भी समस्या का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं निकल सकता। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंट्री सिबिहा के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किर्गिस्तान के बिश्केक में दिए बयान को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करने का समय है। वहीं यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने और छोटे मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। इसके अलावा श्री गोयल ने नई दिल्ली में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स की बोर्ड बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और पेशेवर संस्थाएं कारोबार, नागरिकों और सरकार के बीच विश्वास कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत, समावेशी और टिकाऊ बनाने के लिए तकनीक, एआई और नवाचार को अपनाने पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्यों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने त्रिपुरा से 18 मीट्रिक टन जैविक चावल की खेप को निर्यात के लिए रवाना किया है। चावल की चार किस्मों की यह खेप ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड्स भेजी जा रही है। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,252 हो गई है। वहीं 4,216 लोग अब भी लापता हैं। भारत ने कल नेपाल के लिए दो और विमानों के जरिए 21.5 टन राहत सामग्री की नई खेप भेजी। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने बताया है कि गृह मंत्रालय नेपाल में लापता लोगों की पहचान के लिए डीएनए जांच की सुविधा उपलब्ध कराएगा। देशभर में आज जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। दिल्ली यातायात पुलिस ने जन्माष्टमी को लेकर यातायात परामर्श जारी किया है। रोहिणी के इस्कॉन मंदिर, रामलीला ग्राउंड और जापानी पार्क में आज सुबह 7 बजे से रात 1 बजे तक यातायात बाधित रहेगा। महिला क्रिकेट में भारत ने हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 193 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 16 ओवर और 2 गेंद में 56 रन पर ऑल आउट हो गई। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में आज तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. India and Belgium have reaffirmed their commitment to deepening trade, investment and economic cooperation. Prime Minister Narendra Modi and his Belgium counterpart, Bart De Wever, welcomed the growing diversification of sectors in bilateral trade in the India-Belgium joint statement released after the talks between the two leaders in New Delhi. Both leaders welcomed the launch of the India-Belgium strategic dialogue. India and Belgium have set an ambitious goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. India and Belgium exchanged several agreements, including letter of intent on defence cooperation and MOUs in the fields of renewable energy for tackling transnational crimes, including cybercrime and diplomatic training. The Supreme Court of India will host the BRICS Chief Justices Forum in New Delhi from today. The forum will bring together Chief Justices, Presidents of Supreme Courts and senior judicial leaders from BRICS, member states and partner countries. The forum will provide a platform for dialogue among the participating judiciaries and for exchange of views on contemporary issues relating to justice delivery, international dispute resolution, technology and sustainable development. Chief Justice of India Suryakant will hold a series of bilateral meetings with heads of judicial delegations on the opening day. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal yesterday called upon the automotive industry to deepen localization, expand exports and prepare to serve global markets. Addressing the 66th Society of Indian Automobile Manufacturers, SIAM, annual convention in New Delhi, he urged the industry to seize the opportunities emerging from India's expanding trade partnerships, growing domestic market and global shifts in manufacturing. He said that the automotive sector would be one of the most important drivers of India's growth story in the years to come. He stated the industry had demonstrated strong growth and that rising incomes and aspirations offered considerable scope for this growth to continue. Vice President and ex-officio Chancellor of Punjab University, C.P. Radhakrishnan, will visit the university in Chandigarh today. During his visit, the Vice President will inaugurate the Advanced Instrumentation Facility at SAIF-CIL, Sophisticated Analytical Instrument Facility, Central Instrumentation Laboratories. The Vice President will also inaugurate the Punjab University Tech Innovation Forum, marking a major step forward in strengthening the university's research, innovation and startup ecosystem. Government has constituted a 31-member Joint Committee of Parliament on Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026. Lok Sabha MP Sanjay Jaiswal will head the joint panel to examine the FCRA Amendment Bill. Prominent names from Lok Sabha in the committee include Bhartruhari Mahatab, Tejasvi Surya, Nishikant Dube, A. Raja and Supriya Sule. From Rajya Sabha, Harsh Vardhan Shringla, Sanjay Kumar Jha, Praful Patel and Menaka Guruswamy have been included in the committee. Both Houses of Parliament on 12th August gave note for referring the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to the Joint Parliamentary Committee for further scrutiny. India Meteorological Department, IMD, has issued an orange warning predicting heavy to very heavy rainfall over Madhya Pradesh today. Heavy rainfall is also expected over Haryana, Chandigarh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Western Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand and past parts of Northeast today. IMD forecast a generally cloudy sky with

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है 100.1 MHz पर। 3:10 हो चुके हैं और रोजाना की तरह अब सुनिए कार्यक्रम हमराही।

आज के इस कार्यक्रम हमराही में आप सभी का स्वागत है, जिसमें आज मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम मोहम्मद रफी जी की आवाज में बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

0: बहुत मुश्किल से करता हूँ तेरी यादों का कारोबार, बहुत मुश्किल से करता हूँ तेरी यादों का कारोबार, मुनाफा कम है पर गुजारा हो ही जाता है। 3:17 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।
1: मैंने एक ख्वाब सा देखा है,
2: जरा मैं भी सुनू।
1: सुन के शर्मा तो न जाऊंगी
2: तुमसे नहीं,

मैंने एक ख्वाब सा देखा। अकेली रात बोलती तो बहुत है, अकेली रात बोलती तो बहुत है, लेकिन सुन सिर्फ वही सकता है जो खुद भी अकेला हो।

जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 3:24 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

तुमने कुछ ना कहा, तुमने कुछ ना कहा और ना कुछ सुना हमने, तुमने कुछ ना कहा और ना कुछ सुना हमने, इशारों इशारों में ही सारी बात हो गई, वक्त का दोनों को ही पता ना चला, वक्त का दोनों को ही पता ना चला, देखते ही देखते सारी रात हो गई। 3:37 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही।

जलाकर हसरत की राह पर, जलाकर हसरत की राह पर चिराग आरजू के, हम तन्हा रातों में आज भी सिर्फ तेरे मिलने का इंतजार करते हैं।

एक बहुत ही प्यारा सा गीत अभी अभी आपने सुना, लिखा है तेरी आंखों में। महफिल में कुछ तो सुनाना पड़ता है, महफिल में कुछ तो सुनाना पड़ता है, गम छुपाकर अक्सर मुस्कुराना पड़ता है। कभी हम भी थे उनके अजीज, कभी हम भी हुआ करते थे उनके अजीज, आजकल उन्हें ये भी याद दिलाना पड़ता है। 3:52 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्क द वेवर से कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड फ्यूल या सप्लाई चेन हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: भारत और बेल्जियम के बीच कल कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इनमें रक्षा सहयोग पर, आशय पत्र तथा नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध सहित अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन शामिल है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन का संघर्ष समाधान तेल, खनिज या एल्यूमिनियम खरीदने या न खरीदने जैसे फैसलों से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने के फैसले पर भारत के प्रति जो यूक्रेन का दृष्टिकोण है उसका देश सम्मान करता है और उम्मीद करता है कि दूसरे देश भी भारत के इस रुख का सम्मान करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश और व्यापार विभाग की रणनीतिक योजना और समन्वय समूह की उप सचिव एली लॉसन, जापान के विदेश मामलों के वरिष्ठ उपमंत्री हिरोयुकी नमाजू और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर शामिल हुए। इस दौरान समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि और सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी तथा मानवीय सहायता और आपदा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। शेरपाओं ने हिंद प्रशांत और वैश्विक स्तर के घटनाक्रमों पर भी विचार साझा किए। बैठक की तैयारियों के सिलसिले में अगली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठक करेंगे। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिला अधिकारी सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1252 हो गई है। वहीं 4216 लोग अब भी लापता हैं। भारत ने कल नेपाल के लिए दो और विमानों के जरिए 21.5 टन राहत सामग्री की नई खेप भेजी। देशभर में आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं दिल्ली यातायात पुलिस ने जन्माष्टमी को लेकर यातायात परामर्श भी जारी किया है। रोहिणी के इस्कॉन मंदिर, रामलीला ग्राउंड और जापानी पार्क में आज सुबह 7 बजे से रात 1 बजे तक यातायात बाधित रहेगा। महिला क्रिकेट में भारत ने हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 193 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 16 ओवर और 2 गेंद में 56 रन पर ऑल आउट हो गई। स्मृति मंधना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

0: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। 4:10 हो चुके हैं और अब हमेशा की तरह समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है अरुणिमा। कार्यक्रम अरुणिमा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें मैं हूं फिर से आपके साथ आपका ही दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम किशोर कुमार जी की आवाज में एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। फिर होंगी कुछ प्यारी प्यारी सी बातें सिर्फ और सिर्फ आपके साथ।
1: चीज खास मैंने उस अनजान देवी के नाम लिखी है जो शायद कहीं किसी जिंदगी के मोड़ पर मेरा इंतजार कर रही है, या यूं समझिए कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं।

से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, जुल्फों में एक चेहरा कुछ जाहिर।

रास्ते मिल ही जाएंगे, मंजिलों की फितरत है वो खुद से चलकर कभी नहीं आती। 4:23 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अर्चित के साथ।

कौन पूछता है पिंजरे में बंद पक्षियों को, कौन पूछता है पिंजरे में बंद पक्षियों को, याद अक्सर वही आते हैं जो उड़ जाते हैं।

लता मंगेशकर जी की आवाज में मेरा साया साथ होगा। मंजिलों पर पहुंचने के बाद ही पता चला, मंजिलों पर पहुंचने के बाद ही पता चला कि मंजिल से अच्छा तो सफर ही था। 4:41 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अर्चित के साथ।

एसटी बर्मन वॉज वेरी ग्रेट मास्टर एंड इंस्पायर्ड मैन. ज़्यादा पिक्चर लेता नहीं था, धरती पर बैठ के कंपोज करता था. सुबह 8 बजे फ़ोन कर देता था, देव शाम को क्या कर रहे हो, आ जाओ, या मैं शाम को आ रहा हूँ. और कई बार ऐसा भी हुआ कि एक ही सिटी में 3-3 गाने फाइनलाइज हुए हैं.

जीवन में सब कुछ हमारा सोच और विश्वास पर ही निर्भर करता है। हमारा विश्वास पहाड़ को भी खिसका सकता है, लेकिन हमारा संदेह समस्याओं का बहुत बड़ा पहाड़ भी लगा सकता है।

4:58 हो चुके हैं। अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अर्चित के साथ। अब से कुछ ही देर में सुनिए हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सुबह श्रीहरिकोटा से जीएसएलवी F-17 रॉकेट के जरिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-5 का सफल प्रक्षेपण किया। इसरो के अनुसार प्रक्षेपण के करीब 18 मिनट बाद भारत के पहले इमेजिंग उपग्रह को जियोसिंक्रोनस कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। EOS-5 से वास्तविक समय में तस्वीरें मिलेंगी, इससे कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में मिलेगी। इसरो अध्यक्ष वी नारायण ने कहा है कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर से कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: भारत और बेल्जियम के बीच कल कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान तेल खनिज खरीदने या ना खरीदने जैसे फैसलों से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबेहा के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने के फैसले पर भारत के प्रति जो यूक्रेन का दृष्टिकोण है उसका देश सम्मान करता है और उम्मीद करता है कि दूसरे देश भी भारत के इस रुख का सम्मान करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश और व्यापार विभाग के रणनीतिक योजना और समन्वय समूह की उपसचिव एली लॉसन, जापान के विदेश मामलों के वरिष्ठ उपमंत्री हिरियोकी नमाजू और भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर शामिल हुए। इस दौरान समुद्री और

0: राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि और सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी तथा मानवीय सहायता और आपदा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। शेरपाओ ने हिंद प्रशांत और वैश्विक स्तर के घटनाक्रमों पर विचार साझा किए। ये बैठक अगले क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की तैयारियों के सिलसिले में हुई। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी दी और आवश्यक निर्देश दिए। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1252 हो गई है। वहीं 4216 लोग अब भी लापता हैं। भारत ने कल नेपाल के लिए दो और विमानों के जरिए 21.5 टन राहत सामग्री की नई खेप भेजी। देश भर में आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं दिल्ली यातायात पुलिस ने जन्माष्टमी को लेकर यातायात परामर्श जारी किया है। महिला क्रिकेट में भारत ने हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 193 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 16 ओवर 2 गेंद में 56 रन पर ऑल आउट हो गई। स्मृति मंधाना ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 64 गेंदों में 124 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. India's first imaging satellite in geosynchronous orbit was successfully launched by a GSLV rocket from the Satish Dhawan Space Center at Sriharikota in the wee hours today. After the completion of a smooth 27-hour countdown, the GSLV F-17 rocket with a 2,367 kg payload mass began its ascent on dot at 2:55 a.m. from the second launch pad at Satish Dhawan Space Center. The ISRO said the state-of-the-art Earth observation spacecraft EOS-05 successfully placed into sub-geosynchronous orbit about 18 minutes after it lifted off from the spaceport. The imaging satellite will provide real-time imagery and help the nation in areas including agriculture and disaster management. ISRO Chairman V. Narayanan said the mission will further strengthen India's Earth observation capabilities and improve the delivery of Earth observation services. India and Belgium have reaffirmed their commitment to deepening trade, investment and economic cooperation. Prime Minister Narendra Modi and his Belgium counterpart Bart De Wever welcomed the growing diversification of sectors in bilateral trade in the India-Belgium joint statement released after the talks between the two leaders in New Delhi. Both leaders welcomed the launch of the India-Belgium strategic dialogue. India and Belgium have set an ambitious goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. India and Belgium exchanged several agreements, including letter of intent on defence cooperation and MOUs in the fields of renewable energy for tackling transnational crimes, including cybercrime and diplomatic training. The Supreme Court of India will host the BRICS Chief Justices Forum in New Delhi from today. The forum will bring together Chief Justices, Presidents of Supreme Courts and senior judicial leaders from BRICS member states and partner countries. The forum will provide a platform for dialogue among the participating judiciaries and for exchange of views on contemporary issues related to justice delivery, international dispute resolution, technology and sustainable development. Chief Justice of India Suryakant will hold a series of bilateral meetings with heads of judicial delegations on the opening day. Vice President C.P. Radhakrishnan, who is also an ex-officio Chancellor of Punjab University, will visit the university in Chandigarh today. He will

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। 5:10 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम भोर सुहानी।

किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिलें तो खुद की मेहनत से ही मिलती हैं। 5:11 हो चुके हैं। कार्यक्रम भोज सुहानी में आप सभी का स्वागत है, जिसमें मैं हूं एक बार फिर से आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम एक बहुत ही बेहतरीन से गीत के साथ।

ये दुनिया भी ठीक हमें वैसी ही दिखती है जैसा हम इसे देखना चाहते हैं। किसी को यहाँ पर गुलाबों में कांटे